FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम

0: दम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

0: वाणी जयराम के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए मेथी के उन्नत खेती के संबंध में जानकारी। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, आज खेती की बात मा लेके पहुंचे हवन मेथी के उन्नत खेती के बारे मा जानकारी। मेथी जौन हे तेन हर दलहन परिवार ले आथे संगवारी हो। एला जम्मो कति उगाए जाथे। एकर पाना डारा के और बीजा के उपयोग हमन सेवाद बढ़ाए बर करथन। पाना डारा मा और बीजा मा औषधीय गुण अब्बड़ कन पाए जाथे, जौन हर रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल ला कम करथे। संगवारी हो, एकर उपयोग ला हमन पशु के चारा के रूप में घलो कर सकत हन। मेथी के खेती मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हमर राज्य में बढ़िया ले करे जाथे। आवाओ जानत हन के एकर बर कौन प्रकार के विधि ला अपनाइन। संगवारी हो, हमन

एथी लगाथन तो चेत रखे बर पड़ी 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हर रहे। माटी के बात करें तो जम्मो प्रकार के माटी में एला हमन लगा सकथन। फिर पानी निकासी वाला जौन बलोई दोमट माटी होते तेन हर बढ़िया माने जाते, एमा ज्यादा जामते और बीजा हर बढ़िया होते। 5.5 से 8 तक माटी के पीएच मान हर हवे ना तो सुघर रही थी। और अब्बड़ कन प्रजाति आते जौन मेथी है तेकर तो उमा ले हमन लगा सकथन, जेमा कसूरी होते, मेथी नंबर 47 होते, मेथी नंबर 14 होते, राजेंद्र क्रांति होते, हिसार सोनाली, ए नाव के किस्म मन बढ़िया होते। तो लगाए बर हमन ला चेत रखना हवे संगवारी हो, भुइया के तैयारी ला बढ़िया ले कर लिहिन। 2-3 पैत बढ़िया नांगर हवे तो नांगर ले, नहीं तो ट्रेक्टर ले बढ़िया जोताई ला करे जाते। और माटी हर बरोबर रहे भाई तो सुघर रही। आखिरी जोताई करत घानी 10 से 15 टन सरहा गल्हा जौन गोबर के खातू है ना तेला बढ़िया ले बगरा दे हो, जेकर ले खेत म सुघर जौन मेथी लगात हन तेकर बीजा हर होवे। चेत रखे बर पड़ते पंक्ति ले पंक्ति के दूरिया ला 22.5 सेंटीमीटर के, और बोवाई जौन है क्यारी में करत हन तो 3 से 4 सेंटीमीटर के गहिला म बीजा ला लगात हन ना तो बने होही। संगवारी हो, एकर संग में हमन फसल चक्र घलाओ लगा सकथन। धान के बेरा आहे तो धान, जोंधरी, मूंग, चारा, ए फसल के संग में मेथी ला हमन घलाओ बो सकथन, जेकर ले अक्तहा कमाई हर होही। खातू माटी के घलाओ आप मन ला चेत रखे बर पड़ही। बोवाई करे के बेरा प्रति एकड़ 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस के व्यवस्था करथन तो सुघर रही थे। संगवारी हो, खरपतवार के घलाव रोकथाम करे ले जौन हमर फसल है तेन हर ज्यादा बढ़वार देते, तो एकर बर 1 चाहे 2 पैत निंदाई गुड़ाई के काम बूता ला करेज बर पड़ी। पहलैया निंदाई गुड़ाई ला हमन 25 से 30 दिन के बाद और दूसरैया निंदाई गुड़ाई ला 1 महीना के बाद कर सकथन। बोवाई करे के पहली 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर ले फ्लू क्लोरोलिन के उपयोग करथन तो बने माने जाते। और ज्यादा होय मा पेंडा मेथिलिन के उपयोग हमन खरपतवार के रोकथाम बर कर सकथन। पौधा हर कहूँ 4 इंच के ऊंचा हो गए है ना तो ऊपरी हिस्सा ला काट के ओला बेच देथन तो सुघर रही, और फिर नवा शाखा ले ज्यादा हमर फसल के बढ़वार हर होही। संगवारी हो, सिंचाई के घलाओ आप मन ला चेत रखे बर पड़ही। बीजा के जल्दी अंकुरण लेहे बर बोवाई ले पहले सिंचाई ला कर लेवे। मेथी के फसल में ज्यादा उपज हर मिले तो एकर बर बोवाई के 1 महीना बाद, 75 दिन बाद और 85 दिन बाद 3-4 पैत सिंचाई करना जरूरी होते, जेकर ले फर है बीजा है एकर विकास हर बढ़िया होते। संगवारी हो, ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेना बहुतेज जरूरी होते, ओकर बाद बढ़िया खेती ले हमर लहलहा के फसल घलो हर होते। एकरे संग देवो विदा, जय जोहार, राम राम।

खेती की बात में अभी आपने जानकारी सुनी मेथी के उन्नत खेती के संबंध में, वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:35 में है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी शरीर

शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना, भूपेंद्र सिंह की मुख्य गायन स्वर में, FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं चिंतन। विषय है नियंत्रण के लाभ।
1: जिस व्यक्ति पर किसी का नियंत्रण नहीं होता वो बहुत दुर्बल होता है, क्योंकि उसकी गलतियां सुधारने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वो बिगड़ती चली जा रही मशीन की तरह होता है, बिना किसी की देखरेख के। आज तक कोई भी बच्चा पलकर बड़ा नहीं हुआ है। निरंकुश और उच्छृंखल लोग अपनी अस्थाई ताकत को देखकर इस भ्रम में रहते हैं कि शासन और अनुशासन परवाह करने लायक चीज़ें नहीं हैं, पर नियम और संयम के कुछ ही प्रकार उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि शक्ति का स्थायी स्रोत नियंत्रण में रहने वालों के ही समीप रहता है। कोई भी कारखाना अनियंत्रित और अव्यवस्थित पावर सप्लाई से सही नहीं चला करता। दंड विधान का नियंत्रण आदमी को अपराध करने से रोकता है, और इंसानियत से गिरने का भय उसे कुकर्म करने से रोकता है। यह नियंत्रण का ही एक पहलू है कि अच्छे माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए उन पर अंकुश लगाते हैं। अच्छे गुरु की सख्ती भी इसी दिशा में लिया गया एक कदम होता है। इसी प्रकार अच्छे बॉस के आदेश भी कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि ही करते हैं, उन्हें कमज़ोर नहीं बनाते। आदमी कमज़ोर तब होता है जब वो गलत रास्ते पर चलता है। कितने शराबी अपने ऊपर नियंत्रण के अभाव में समय से पहले ही यह लीला समाप्त करते देखे जाते हैं। बहुत से बुरे काम हम इसलिए नहीं करते कि समाज

0: हमें बुरा कहेगा, ये हम पर समाज का नियंत्रण है। बहुत सी बातों को हम बच्चों के सामने नहीं किया करते, ये हम पर बच्चों का नियंत्रण है। इसी प्रकार परीक्षार्थी लोग परीक्षाएं पास आने पर समय नष्ट नहीं किया करते, ये उन पर उनके संभावित परीक्षा फल का नियंत्रण है। नैतिक बल जुटाने और आदर जीवन बिताने के लिए आदमी को अपने मन को असंख्य बार नियंत्रित करना पड़ता है और विचारों में दुर्बलता न आने देने के लिए कठोर साधना की जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जब तक किसी से भयभीत नहीं होता, दूसरे शब्दों में जब तक वो अपने पर किसी का नियंत्रण नहीं मानता, तब तक वो अपने में बल नहीं समेट पाता है। कोई आदमी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सामने झुकता है और कोई अपनी सलाहकार समिति या न्यायपालिका के सामने सिर झुकाता है। जनतंत्र में शासक वर्ग विरोधी दलों की आलोचनाओं के नियंत्रण में काम करता है। सेना में ताकत इसलिए होती है कि उस पर आदेशों के अंकुश रहते हैं। नियंत्रण का व्यवस्था से, व्यवस्था का दंड से और दंड का नियंत्रण से घनिष्ठ संबंध है। एशियाड के दिनों की याद कीजिए, उस अपूर्व व्यवस्था के पीछे दंड के भय और नियंत्रण का ही कमाल था। व्यवस्था सिर्फ उन लोगों को बुरी लगती है जो या तो अव्यवस्था फैलाने वाले होते हैं और या अव्यवस्था के कारण गलत फायदे उठाते रहते हैं। अपने ऊपर नियम और बंधन लगवाना वही लोग पसंद नहीं करते जो किसी भी अन्य के भले के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने भले की सोचते हैं। वरना यदि उनके समान प्रत्येक व्यक्ति निरंकुश और मतलबी हो जाए तो जरा सोचिए कि क्या जंगल की स्थिति निर्मित नहीं हो जाएगी। यदि ऊपर के किसी भी कानून को न मानकर सभी लोग उसे अपने अपने हाथों में लेकर चलें, तो क्या आदमी आदिम अवस्था के भी पीछे की सभ्यता में नहीं पहुंच जाएगा? चूंकि इंसान सर्वेसर्वा नहीं है, इसलिए चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, उसकी इंसानियत इसी में है कि वो अपने को नियंत्रण में मानकर चले, समय के, सद्बुद्धि के और सद्भावनाओं के, नैतिक मूल्यों के, सामाजिक दायित्वों के और राष्ट्रीय वर्जनाओं के।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था नियंत्रण के लाभ। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है।

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सुबह कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। माटी के स्वर कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:30 पर, और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे सुबह 7:40 पर, और नए तराने कार्यक्रम सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कानून की बात, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। कानून की बात में जगदलपुर जिला न्यायालय के अधिवक्ता श्री शैलेश दुबे जानकारी देंगे किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में। सुबह 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में डॉक्टर देवेंद्र सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत आप सुनिएगा। विषय होगा सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव। आज आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। सुबह 10:00 आओ बच्चों कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा दोस्ती जो हम

में बेहतर इंसान बनाती है। और साथ ही आप सुनेंगे बाल सभा, बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी इसमें। और सुनिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी VVM परीक्षा के राष्ट्रीय स्तर के विजेता सारांश दुबे से बातचीत। भेंट करता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग का विभाग आप सुनिएगा सुबह 9 बजे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत और बेरा के घोट आदि विषय भी आप सुनेंगे। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर, रजनीगंधा रात 8:15 पर और सुगम संगीत सुनिएगा रात 8 बजे। सुगम संगीत में आज कलाकार होंगे संजय वत्सल। ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:35 पर, फिर शाम के 6:20 पर और फिर शाम के 7 बजे।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:15 से 9:55 तक, फिर दिन के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक और फिर रात के 9:15 से रात के 11 बजे तक। एक बार फिर आपको बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग सुबह 9 बजे प्रसारित किए जाएंगे। और सुबह 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में डॉक्टर देवेंद्र सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत आप सुनिएगा। विषय होगा सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे जीआई फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: नवोत्तरैकलक्षकोटि रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारं उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 28,21,000 कोटिरूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,88,10,000 कोटिरूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,08,000 कोटिरूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66,88,000 कोटिरूप्यकाणि महाराष्ट्रराज्यं च 22,00,000 कोटिरूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गो नगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5,000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी

0: चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइड्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मित्रों नमस्कार। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये सुंदर रचना मित्रता के भाव को अति सुंदर संरचना देती है। मित्रों यूं तो हर दोस्त खास होता है, लेकिन फिर भी जीवन में कोई ऐसा जो हर मुश्किल में स्तंभ बना सहारा दे, हर खुशी को दोगुना नहीं कई गुना कर दे अपनी उपस्थिति से, ऐसे मित्र की हम हमेशा कद्र करें। सभी को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। मित्रता आपकी हमेशा कायम रहे, हमारी और आपकी तो कायम है ही। हम सभी अच्छे दोस्त बनाएं और खुद भी अच्छे दोस्त बनें।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल।

0: जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: मित्रों, आइए अब याद करें प्रफुल्ल चंद्र राय जी को, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सन 1896 में मर्कुरस नाइट्रेट की खोज की, इस वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र पढ़ाया करते थे वे। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा उन्होंने। स्वदेशी की भावना की मिसाल कायम करते हुए उन्होंने 1892 में मात्र 700 रुपए की पूंजी से अपने घर से ही फार्मास्यूटिकल्स का काम शुरू किया और सन 1901 में भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड पंजीकृत की। सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा और शांति स्वरूप भटनागर उनके छात्र रहे। आचार्य राय हमेशा एक संस्कृत श्लोक दोहराया करते थे, जिसका अर्थ था, व्यक्ति को हर जगह से जीत की कामना करनी चाहिए, लेकिन अपनी संतान और शिष्यों से हारने में ही सच्ची खुशी और गर्व महसूस करना चाहिए। जब उनके शिष्यों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली तो वे सबसे ज्यादा खुश हुए। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नई सुबह के साथ, नए संदेशों के साथ, मैं हूं उमाशंकर पांडे। यातायात संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की शहरी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी प्रमुख सड़कों में, सभी ग्रामीण सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी मुख्य सड़कों में होटल, ढाबा या पेट्रोल पंप के पास भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर, कैप्सूल आदि रात के समय देर तक खड़े रहते हैं। कई वाहनों में पार्किंग लाइट या बैक लाइट भी बंद रहती है। इनके चालक वाहन के अंदर सो रहे होते हैं। इसी प्रकार लंबी दूरी के वाहन चालक भी मुख्य सड़क में वाहन का एक पहिया नीचे उतारकर बिना किसी इंडिकेटर या पार्किंग लाइट जलाए सो जाते हैं, या वाहन में कोई खराबी आ जाने से तो सड़क में ही बिना किसी संकेत के वाहन खड़ा कर देते हैं। ये वाहन बहुत अधिक घातक हुआ करते हैं। वस्तुतः इस मार्ग में दौड़ रहे अन्य वाहन के चालक को सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट में सामने सड़क में खड़े वाहन का ठीक से आभास नहीं हो पाता और ये वाहन पीछे से खड़े वाहन से टकरा जाते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी लापरवाही के चलते जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, अनेकों अनाथ हो चुके हैं। इस संदेश के माध्यम से पुनः ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को हिदायत है, सड़कों में इस प्रकार खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा ना करें। संबंधित होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप के संचालक की भी जिम्मेदारी है कि अपने पास इस प्रकार सड़कों में वाहन को खड़ा ना होने दें। साथियों, यद्यपि

0: यातायात के वाहन 24 घंटे सातों दिन सड़कों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तथा ऐसे वाहनों को तत्काल हटा भी रहे हैं। फिर भी यदि आपको कहीं ऐसी स्थिति में कोई वाहन खड़ा दिखाई दे तो पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल नंबर 9479193099, जी हाँ नंबर पुनः सुने 9479193099 में फौरन सूचित करें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी की जान भी बचा सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और मित्रों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक गीत, फिर उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

0: सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मित्रों, आइए अब याद करें महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्वविद्यालय स्थित है, जो राज्य का सबसे बड़ा और पुराना उच्च शिक्षा संस्थान है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जिनके योगदान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नमक कानून तोड़ने और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो गिरफ्तार हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में वे प्रमुख नेताओं में शामिल थे और लंबे समय तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया उन्होंने और महाकौशल नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला। छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड की विभिन्न रियासतों को भारत संघ और मध्य प्रदेश में मिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी रविशंकर शुक्ल जी ने। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत प्रशासनिक नींव रखी, शिक्षा, कृषि और उद्योग के विकास के लिए कई मजबूत नीतियां लागू की। आज उनकी जयंती पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति का समय हो चला है। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।

0: आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आज सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत का दूसरा भाग आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीआई फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। लीवर एवं पाचन तंत्र के रोगों सहित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और गंभीर बीमारियों की रोकथाम स्वस्थ जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से संभव है। स्वास्थ्यगत प्रत्येक छोटा कदम बड़े परिवर्तन का आधार बनता है। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड बिलासपुर।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और आज हम हमारी पिछली बातचीत के आगे का हिस्सा आपको सुनवाना चाहेंगे कि हमारा आहार और उस पर सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कैसे समझें और एक स्वस्थ जीवन शैली में एक अच्छे आहार की ओर कैसे बढ़ें। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ। आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। पिछले कार्यक्रम में हमने काफी विस्तार से सोशल मीडिया की जो सूचनाएं हैं उसका कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है इस पर हमने चर्चा की थी। और

0: आज हम वहीं से आगे शुरू करते हैं कि सूचनाएं तो बहुत सारी हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। तो इन सोशल मीडिया से जुड़ने का और इन सूचनाओं का क्या फायदा हमको मिलता है अपने आहार के चयन के संदर्भ में?
1: सुप्रिया जी, सोशल मीडिया एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अपना YouTube वीडियो बनाकर नेट में डाल सकता है
0: जी।
1: उससे कोई क्रेडेंशियल नहीं पूछा जाता कि वो क्या इस काबिल है कि वो खान पान के विषय में कोई वीडियो बना पाए या ना पाए, कोई सर्टिफिकेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी खुली फील्ड है। अगर आप कहीं प्रैक्टिस करते हो, मेडिकल प्रैक्टिस करते हो, तो आपको लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन YouTube में अगर आपको वीडियो डालना है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी डाल देता है। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, डायटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिशियंस YouTube का वीडियो डाल रहे हैं तो जाहिर है वो जो भी आपको विषय बताएंगे, जो भी बात करेंगे, वो फायदे की ही बात होगी। और वो जो भी आपको बताएंगे वो जेन्युइन होगा, उसे आपको फॉलो करना है। कई बार कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं, लोग तय ही नहीं कर पाते कि हम इस मरीज के, इस रोग के मरीज है, तो हम क्या खाएं। जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट अगर खानी हमने
0: जी।
1: अब ग्लूटेन फ्री डाइट के विषय में अगर कोई बताता है, कोई फिजिशियन बता रहा है, कोई डाइटिशियन बता रहे, कोई न्यूट्रिशनिस्ट बता रहे, तो जाहिर है आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन ही करेंगे। इसके अलावा मोटापे में, फैटी लिवर में एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो एक प्रकार की डाइट खाते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होती है। इन डाइट में कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स की बहुतायत होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है, ऑलिव ऑयल होता है। तो ये एक ऐसी डाइट है जो कि हर आदमी नहीं समझ पाता कि कैसे उसको खाया जाए। और वही मेडिटेरेनियन डाइट का जो भारतीय प्रकार है, कैसे होगा, हम कई चीजें हैं, ऑलिव या तो आमतौर पर मिलते नहीं, और कई सारी चीजें हैं, कई फल यहाँ मिलते नहीं, और हमारा ऑलिव ऑयल भी सब जगह नहीं मिलता है। तो कैसे इसका जो भारतीय मेडिटेरेनियन डाइट होगी, कैसी होगी, ये सब समझाने के लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब ये तो रहे इसके फायदे,
0: मतलब उस फायदे के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस पोस्ट को आप देख रहे हैं वो सही जगह से आई है और सही व्यक्ति के द्वारा दी गई है। ये जागरूकता पहली जरूरत है कि आप सोशल मीडिया की पोस्ट पर पहले नजर डालें कि वो किसने डाला है और वो वाकई में क्वालिफाइड है कि नहीं, क्या है।
1: जी हाँ,
0: ये समझने के बाद ही आगे की बात होगी।
1: कायदे से तो ये ऐसा अधिकारियों को देखना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति इस काम को करने के लायक है या नहीं। आप किसी प्लम्बर से किसी बिजली बल्ब को फिटिंग नहीं कराते, लेकिन जब कोई भी मीडिया में डालता है, सोशल मीडिया में, तो आप उसको तुरंत फॉलो करने लगते
0: जी, जी, जी।
1: तो यही जरा अपनी सोच को मजबूत करने की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जो चीजें शहर में पहले आती हैं उसके 4-5 साल बाद वो गांव में, अब तो गांव का समय भी कम हो गया, साल नहीं लगते अब तो, जब से व्हाट्सएप और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स गांव को भी उतने ही गलत ढंग से पकड़े हुए हैं। तो गांव की जो जनता है उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो अच्छा खान पान रहा वो धीरे धीरे ये सारे प्रोसेस्ड फूड और इस तरह के रील्स देख देख कर वो भी अब अपनी अच्छी चीजों को छोड़कर ये जो पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब के एड में बड़े बड़े लोग आते हैं और एड करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम जिन पे भरोसा करते हैं वही लोग इसका एड करते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो कैसे समझें?
1: वो अपनी जिंदगी में खुद इस तरह की चीजें नहीं खाते हैं वो इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आमतौर पर ऐसा ही होता है।
0: सही बात है,
1: और ये बहुत ही गलत है, ये एक मैं कहता हूँ कि मोरली गलत बात है। लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है तो हमें ही जागरूक रहना है, हमें खुद का बचाव करना है, क्योंकि जहाँ भी हाई कैलोरी खाने का प्रमोशन होता है आगे चल के मोटापा होता है, मोटापे की वजह से डायबिटीज होती है, साथ में हाइपरटेंशन होगा, दिल की बीमारियां होंगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, बच्चों में, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होगा
0: जी।
1: उसके बाद इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर भी पैदा होते हैं। अब ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि लोग इतनी सारी बातें बता देते कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो कई बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनमें एक बीमारी हो जाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब वो कुछ भी नहीं खाती, फिर खाना ही छोड़ देती है, आमतौर पर लड़कियों में होता है। बुलिमिया नर्वोसा, जो कि प्रिंसेस डायना को भी हो गया था, तो इस तरह की बीमारियां ऐसे इन्फ्लुएंसेस की वजह से हो जाती है।
0: मतलब दुबले पतले दिखने की चाहत में आप खाना ऐसा छोड़ रहे हैं कि आपके अंदर पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल जी,
0: ये तो बहुत ही खतरनाक
1: स्थिति है, उसको ठीक करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत समय भी लगता है।
0: और एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक स्रोत है, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया में देखें तो हर व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य बना हुआ है। हर दिन आपको कोई डिटॉक्स की चीज दिखती है, हर दिन आपको एक सलाह मिलती है कि इन पत्तियों को उबालो, आधा होने के बाद इसको रोज पी लो तो आपके जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, क्या करें?
1: देखिए, एक बात बहुत ही साफ तौर पर बता दूं कि कहीं भी स्वास्थ्य के मामले में कोई मैजिक नहीं होता है
0: जी,
1: कोई जादू नहीं होता है। अगर कोई आपको बताता है कि इस खाने को खाओ और आपका कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा तो सरासर झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा बताते हैं लोग, कार्बोहाइड्रेट जो है हमेशा बहुत खराब होते हैं, हार्मफुल होते हैं आपकी सेहत के लिए, झूठ है, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार लोग कहते थे कि शाम के बाद आपको कोई फल नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि

0: ये डिटॉक्स फूड है, इसको खाइए आपके अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल के बाहर आ जाएंगे, वो भी सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई बार लोग कहते हैं कि एक्सेसिव सप्लीमेंट यूज करने को प्रमोट करते हैं कि बहुत सारा प्रोटीन खाना है, फैट बर्नर्स खाने हैं, हर्बल प्रिपरेशन कई सारे खाने जो कि आपको पता नहीं है कि क्या उसके अंदर मिला हुआ है। अगर कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदा आचार्य बताते हैं तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आजकल तो हर कोई इसका बताने लग गया है। और इसके अलावा विटामिन
1: नुकसान कुछ आपने आपके नजर में आए हैं क्या, लोगों ने इसका लगातार उपयोग किया हो इस तरह के हर्बल प्रिपरेशंस का और वो बाद में परेशान हुए हो?
0: जी हाँ बिल्कुल, हमें कोविड के दौरान हमने देखा कई बार लोग काढ़ा पी के बीमार होके आए, उनके लीवर में समस्याएं हुई, लीवर फेलियर तक हो गया। मुख्य रूप से गुड़ची या गिलोय का जूस पी के काढ़ा पी के कई लोग आए, उन लोगों में जो बहुत दिनों तक सेवन करते रहे उनमें तो हुआ, कई बार एक डोज लेने से भी हो गया
1: जी।
0: वो ज्यादा मात्रा में अगर किसी ने एक डोज ले ली, एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है और ये ऑटो इम्यून रिएक्शन को पैदा करता है। ये हर किसी में नहीं होता, बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन कुछ लोगों में होता है, तो ये भी इसको तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी है, गिलोय छोड़ना जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि जो हैवी मेटल की मात्रा बहुत ज्यादा होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये हैवी मेटल हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो इनसे भी बचने की जरूरत होती है।
1: धीरे धीरे कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी ये बातें जाके जुड़ तो नहीं रही हैं?
0: बिल्कुल जुड़ रही हैं। मैंने जैसे बताया था पिछली बार भी कि एक अनरियलिस्टिक गोल्स पैदा करते हैं
1: जी।
0: जिनका वो गोल होता नहीं, वैसी वाले वैसा फिजिक बनता नहीं, वैसी बॉडी नहीं बनती, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, एंग्जायटी उनको होती है। रोज वो एक टारगेट लेके जाते हैं, मुझे 10,000 बार ऐसे करना है, मुझे 5,000 बार यूं करना है, मैंने लेग एक्सरसाइज करनी है, और अपने कैपेसिटी से ज्यादा कर जाते हैं। इस बार कई बार देखा होगा आपने जिम में अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति हार्ट अटैक से वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो ऐसे टारगेट को का पीछा कर रहे होते हैं जो उनके लिए अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि लोग अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुखदाई बात है कि वो फिर जिम में कई बार हार्ट का अटैक हो जाता है, कई बार चलते चलते गिर पड़ते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी अनफॉर्चुनेट स्थिति होती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ में एक और दूसरा होता है कि पुअर सेल्फ एस्टीम, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे उस दोस्त ने कर लिया, उसने कर लिया, लेकिन मैं ऐसी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप सबके जीन्स अलग है, सबके पेरेंट्स डिफरेंट थे, अगर आपके पेरेंट्स लीन एंड थिन स्लिम रहे हैं और आप चाहोगे कि मेरी बॉडी बहुत जो ऐसी वाली बन जाए तो वो तो संभव नहीं है। तो आपको ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आपको ऐसे बनना है, नहीं बन पाते तो आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और आप हमेशा अपने शरीर से डिससेटिस्फाइड रहते हो, आपको लगता है कि मेरा शरीर क्यों इतना है, खराब क्यों है। तो ये सब गलत बात है, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के द्वारा जो गलत प्रभाव पड़ रहे हैं यही सब पड़ रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बड़ा असर हो रहा है।
1: बहुत सही डॉक्टर साहब, और बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची है कि एक दो धारी तलवार है सोशल मीडिया, इसमें आपको समझना है क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए उचित है, और आप अपने आप में एक व्यक्तित्व है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जब दूसरा नहीं है तो हर सूचना आपके लिए भी नहीं है, आप अपने लिए सही सूचना चाहती है, उसमें सही ऑथेंटिक लोगों की पोस्ट को समझिए और जो आपके लिए सबसे अच्छा उसका चयन करिए। आज डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बड़े ही विस्तार से डाइट, हमारे आहार और उस पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बताया। डॉक्टर साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: संतुलित व पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तंबाकू शराब से दूरी, मानसिक तनाव पर नियंत्रण, स्वस्थ पर्यावरण को संरक्षण ही खुशहाली का रास्ता है। आइए हम सब मिलकर के ऐसा समाज बनाएं जहां रोगों की रोकथाम को उपचार जितना महत्व मिले। गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरदीप इंद्रजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आज सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव, इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत का दूसरा भाग आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GI फाउंडेशन और लिवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना

ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अब आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत है ये, SP बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ें, असद भोपाली का गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: बधाई हो सेठ जी आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब आप देखते जाइए अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई सिर्फ शहर में अरे गांव में नहीं महकेगी क्या।
8: महकना तो गांव में भी चाहिए मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा।
7: आकाशवाणी से
9: गांव हो या शहर अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं वो गीत जिसका आपको इंतजार है।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है।

0: इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप

0: डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से

0: पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे। Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. U.S. President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak, in Mysuru, Karnataka.

माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। और गीत से पहले आप सभी फरमाइशकर्ताओं के नाम बता दें। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, नीरज रावत, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लूथरा खमरिया से। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, बावली बर्राकोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, हरीश कुमार कौशिक और शिवम कुमार कौशिक। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। दत्रेंगी से हैं हमारे ये श्रोता नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्रमणि वर्मा। शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अलफैज़ खान, सादिया खान और हज़ीरुन्निशा। मगरलोड से हैं पुनुराम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री, राजवीर साहू, रामचंद मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति मखीजा, पूजा छुटकी माड़ी, शरद कुमार और पूरा माखीजा कुटुंब। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं प्रीतम साहू और साथियों की आवाज़ों में ये देशभक्ति गीत।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, पसंद किया है आप सभी ने। हमारे ये श्रोता हैं भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवा राम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम टेलर, जितेंद्र साहू मारवाड़ी कुआं भाटापारा से हैं, सियाराम टेलर, अश्विनी पांडे सोनाडे से हैं, सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा रायपुर से, नीलू मेघ और हरिओम, और देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाफिया रजक, कुमारी टानिया रजक, और मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई के श्रोता हमारे ये नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सोमा शारदा, दामिनी वर्मा, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, विजेंद्र ब्रिजकांत सारथी, मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, मोती गार्डन भाटापारा से, भाटापारा से ही हैं राम कुमार राउत, अमेरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, सुभाष वाड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण

यादव युवा युवान ढाबेश यादव, हदबन नेवदास से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और वेद कुमार यादव, रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद पे। महावीर वार्ड भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव। हथबंद नेवदा से हैं श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती प्रियंका यादव, कुमारी प्रीति यादव, श्रीमती उमेश्वरी यादव, श्रीमती सुनती यादव। सुंदर पारा रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन साहू, घनश्याम साहू, अलका जानवी और गौरव साहू। नर्मदा धाम सुरसुली बालोद से हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, दीकेंद्र यादव और योगेश यादव। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू हमारे ये श्रोता हैं। पलारी जिला बलौदा बाजार से नितेश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। पोड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा और अंशु साहू। आप सभी की पसंद पे अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार की आवाज़ों में।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, पसंद आप सभी की। शिवाजी चौक राजिम से हैं अनिल कुमार, मंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश, रूही और लबी श्रीवास्तव। बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरु साहू। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं ये गीत।

गंगा बाई और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ माटी के स्वर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते आपको पता बता दें जिससे आप हमें फरमाइश भेज पाएं। माटी के स्वर ये है कार्यक्रम का नाम, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर 495006। ज़रूर हमें पत्र भेजिएगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए माटी के स्वर कार्यक्रम से। नमस्कार।

ज़िले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कानून की बात, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। कानून की बात में जगदलपुर ज़िला न्यायालय के अधिवक्ता श्री शैलेश दुबे जानकारी देंगे किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में।

0: More importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम इनोसेंट है, उसको कोई भी मिसगाइड कर सकता है, ट्रेड यूनियंस या कोई भी मिसक्रिएंट व्यक्ति उसको मिसगाइड कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क्स कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क्स कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज़ को वो एड्रेस करे. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी. सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब काउंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाएगी.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो कर्मचारी जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal और जिसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है

तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2 मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा और जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाते जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोडन वेजेस की, क्योंकि कोडन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट्स या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज़ को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह देगा। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, SI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPFO और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को गवर्न करेंगे। सो इसमें भी 2 अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कंपिटेंट अथॉरिटीज़ और अपेलेट अथॉरिटीज़ जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हैं इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पर, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज़ का प्रावधान किया गया है जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ और अपेलेट अथॉरिटीज़ का सिमिलर प्रोविज़न है जैसे आप पिछले कानूनों में

0: इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज इसकी आप चौथी कड़ी सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब से 9:55 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में इशारा हो गया।
4: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाजों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को, एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने यह बात कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान होगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नवीन आपराधिक कानूनों के माध्यम से डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाना विषय पर आज रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस और न्यायिक तंत्र के अधिकारी शामिल होंगे। राज्यपाल रमेश डेका ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करना है। राज्यपाल कल रायगढ़ स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान संकाय के 688 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 84 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि 5 अगस्त से उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में वर्षा होने के आसार हैं। रायगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 2 श्रमिकों की कल रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हाल ही में इस स्टील प्लांट के एक फर्नेस से पिघला हुआ लोहा निकलकर श्रमिकों पर गिर गया था, जिससे 4 श्रमिक झुलस गए थे। इनमें से गंभीर रूप से घायल 2 श्रमिकों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उनकी मौत हो गई। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। धमतरी जिले के नगरी इलाके के कर्रा घाटी गांव में एक तेंदुए का शव मिला। मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए ने 31 जुलाई की रात इस गांव के 2 लोगों पर हमला किया।

था। इसके बाद सुबह एक ग्रामीण के घर से तेंदुए का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए के सर पर अंदरूनी चोट की पुष्टि हुई है। वन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि वीएसके ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी टीम को 15 अगस्त तक ऐप की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के सुझावों के आधार पर वीएसके ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: लिए है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के सुझावों के आधार पर वीएसके ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति है लिंटा की।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को लिंटा दीदी का प्यार और स्वागत आपके फेवरेट प्रोग्राम आओ बच्चों में। आज हम सभी फ्रेंडशिप डे भी मना रहे हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता बच्चों जिसे हम खुद चुनते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियां लाता है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। केवल साथ खेलने, हंसने या बातें करने का नाम दोस्ती नहीं है। सच्ची दोस्ती हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा दोस्त कौन है, तो शायद आपके मन में किसी न किसी का चेहरा होगा जिसे सोचकर आप मुस्कुरा रहे होंगे, है ना बच्चों। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम जन्म से नहीं पाते, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार, विश्वास और प्यार से बनाते हैं। शायद यही वजह है कि दोस्त हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जिनके साथ आप मस्ती करते हैं, स्कूल में टिफिन शेयर करते हैं, बातें करते हैं, वही आपके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक अच्छी और सच्ची दोस्ती बच्चों आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती है। सोचिए, यदि आपका दोस्त हमेशा समय पर स्कूल आता है, सबकी मदद करता है, बड़ों का सम्मान करता है, सच बोलता है, तो क्या धीरे धीरे आप भी वैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे ना। और यही आदतें बच्चों दोस्ती की बड़ी ताकत भी होती है। बच्चों आपने वो कहावत सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत, जिसका मतलब है जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका असर हमारे व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। और हाँ बच्चों, दोस्ती का मतलब ये भी नहीं है कि कभी आपस में मनमुटाव या झगड़ा ना हो। छोटी छोटी नोक झोंक तो बच्चों हर दोस्ती में होती है, लेकिन जो मित्र या दोस्त सॉरी कहने में देरी नहीं करता, माफ करने का भी दिल रखता हो, वही दोस्ती लंबे समय तक याद भी की जाती है बच्चों। इसलिए हमेशा याद रखिए, अच्छा दोस्त ढूंढने से पहले खुद एक अच्छा दोस्त बने। जब आपका कोई दोस्त उदास हो तो उनका हौसला बढ़ाएं, जब उसे मदद की जरूरत हो तो हाथ थामिए, और जब वह कोई अच्छा काम करे तो उसकी दिल से तारीफ कीजिए। याद रखिए बच्चों, दोस्ती केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, लेकिन जीवन भर निभाया जाने वाला रिश्ता है। एक और बात, दोस्ती हर उस चीज से हो सकती है जिससे हमें प्यार हो, जिसकी हमें परवाह हो, जिसकी खुशी में हमें अपनी खुशी दिखाई दे। आपके घर का पालतू डॉगी, बिल्ली, गाय या फिर आंगन में रोज चहचहाने वाली छोटी सी चिड़िया, ये भी तो आपके दोस्त हैं जिनसे मिलकर आपको खुशी मिलती है, है ना बच्चों। ये बोल नहीं सकते, लेकिन अपने तरीके से हमें प्यार जरूर जताते हैं। जब हम उन्हें दुलारते हैं, समय पर खाना पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो वे भी हम पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, और ये भी एक सच्ची दोस्ती है। इसी प्रकार यदि बात हम प्रकृति की करें, तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमें छाया देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, नदियां हमें पानी देती हैं। क्या ये भी हमारे सच्चे मित्र नहीं है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और अगर ये हमारे दोस्त हैं, तो हमारी भी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। जब आप एक पौधा लगाते हैं, पक्षियों के लिए गर्मी में पानी दाना रखते हैं, किसी घायल जानवर की मदद करते हैं या अपने आसपास सफाई रखते हैं, तब हम केवल प्रकृति की रक्षा नहीं करते, बल्कि उनके साथ अपनी दोस्ती भी निभाते हैं। याद रखिए बच्चों, सच्चा

दोस्त केवल लेने वाला नहीं होता बल्कि देने वाला भी होता है। प्यारे बच्चों, दोस्ती केवल दो लोगों को नहीं जोड़ती बल्कि दो दिलों को भी जोड़ती है। और यदि हम इंसानों, पशु पक्षियों और प्रकृति से दोस्ती करना सीख जाते हैं तो हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। इसलिए बच्चों, सबसे प्रेम करें, अच्छा व्यवहार रखें और अपनों का ख्याल भी रखें। यही सच्ची दोस्ती है और आपको बेहतर इंसान भी बनाती है। और इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा विराम लेते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, कहा जाता है कि सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे मेहनत, लगन और आत्मविश्वास होता है। जब कोई विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई करता है, जिज्ञासु बनकर कुछ सीखता है और हर चुनौती को अवसर समझकर आगे बढ़ता है, तो सफलता हर मोड़ पर उसको हासिल होती है। और हमारे साथ बच्चों, आज स्टूडियो में ऐसे ही एक होनहार और प्रतिभाशाली विद्यार्थी आमंत्रित हैं, जिन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। और आप हैं सारांश दुबे, जिनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। आइए जुड़ते हैं हम इनसे।

0: आओ बच्चों, कार्यक्रम में शामिल सभी नन्हे बच्चों को सुप्रिया दीदी का नमस्कार। बच्चों, आज हमारे बीच आओ बच्चों कार्यक्रम में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी हैं, सारांश दुबे जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनकी उपलब्धियों के बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही उनके शौक भी बड़े अच्छे अच्छे हैं और वो चेस बहुत अच्छा खेलते हैं। और हाल ही में उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 13 चेस एसोसिएशन की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और अब वो फाइड रेटिंग के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब वो चेस खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है पूरे बिलासपुर नगर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। और जो अच्छी बात उनके साथ ये है कि उन्होंने VVM यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल कैंप में पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया और वेस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आज हमारे जो दोस्त हैं जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको विशेष रूप से हम VVM यानी विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये जो नेशनल कैंप होता है इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके बारे में खुद सारांश जी अपने दोस्तों को बताएंगे, उसी के लिए आज वो यहाँ आए हुए हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन।
1: जी धन्यवाद। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: बहुत अच्छी बात है, आज आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों का ये कार्यक्रम है वो तो सुन ही रहे हैं
1: जी
0: सारांश, और साथ ही हमारे अभिभावक भी सुन रहे होंगे आओ बच्चों कार्यक्रम, जो पूरे दुनिया में जहां भी लोगों ने आज रेडियो ट्यून किया है वो सभी इसको सुन रहे हैं
1: जी।
0: तो मुख्य रूप से जो चर्चा आज हम करना चाहते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल कैंप के बारे में करना चाहेंगे
1: जी।
0: आप हमें बताइए कि ये क्या है, ये किस तरह की प्रतियोगिता है और कौन इसको आयोजित करता है।
1: विद्यार्थी विज्ञान मंथन भारत की सबसे बड़ी विज्ञान की प्रतियोगिता है। यह कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक होती है। इसको विज्ञान भारती, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NCERT के साथ में करवाती है।
0: तो ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक एग्जाम है
1: जी। राष्ट्रीय के साथ साथ 20 और देशों के छात्र इसको देने आते हैं, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मानी जा सकती है।
0: वाह वाह, क्या बात है। तो हमको इसके बारे में बताएंगे कि आप कब से इसकी तैयारी कर रहे थे।
1: इसकी तैयारी तो मेरी कक्षा 6वीं से ही शुरू थी, जब मैंने पहली बार परीक्षा दी, उसके बाद से कक्षा 7वीं में मेरे को अच्छा परिणाम मिला राष्ट्रीय शिविर में।
0: तो हमको ये बताएंगे कि ये परीक्षा, इसकी सूचना कैसे बच्चों को मिलती है, उन्हें कैसे पता चले।
1: मुझे तो सूचना मेरे स्कूल के थ्रू मिली थी। ऐसे ही बच्चे विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वेबसाइट vvm.org.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा या तो आप अपने स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
0: जो बच्चे स्कूल जाते क्या वही इसमें भाग ले सकते हैं।
1: हाँ, ये स्कूली छात्रों की प्रतियोगिता है और इसमें जरूरी है कि आप स्कूल के थ्रू ही जाएं ज्यादातर।
0: बहुत बढ़िया। अब हमको ये बताइएगा कि इसकी योग्यताएं और क्या क्या हैं। जैसे आपने कहा कि आपने 6वीं में भी एग्जाम की तैयारी शुरू की, फिर 7वीं में आप गए, तो ये किन कक्षाओं के बच्चों के लिए है।
1: ये कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं के बच्चों के लिए है जो कि विज्ञान में रुचि रखते हैं।
0: अच्छा, तो ये जो 6वीं से 11वीं तक के लिए सभी बच्चों के लिए एक ही तरह की परीक्षा होती है।
1: नहीं, इसका जो सिलेबस है अलग अलग क्लास के लिए अलग होता है, परंतु एक पैटर्न है इसके सिलेबस का। ऑनलाइन पहले दो स्तर होते हैं, फिर आपको दो स्तर ऑफलाइन देने पड़ते हैं।
0: ओके।
1: सबसे पहले ऑनलाइन स्तर में आपको 50% NCERT के साइंस एंड मैथ सिलेबस को पढ़ना पड़ता है और 50% आपको भारतीय वैज्ञानिकों और भारत के कंट्रीब्यूशन जो है विज्ञान में उसके बारे में पढ़ना पड़ता है।
0: ओके।
1: उसके बाद हम दूसरे स्तर में जाते हैं जिसमें हमें सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है।
0: वाह वाह, तो ये हमको बताइएगा सारांश कि इसका जो पहला स्तर है उसकी तैयारी के लिए कितने दिन लगते हैं।
1: ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप रुचि के साथ पढ़ते हैं और रोज 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई को दे पा रहे हैं तो आपको 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप रुचि लेकर आधा आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो भी आपका 1 महीने में हो जाना चाहिए।
0: अच्छा, ये बताइए कि ये परीक्षा कब होती है, पहला स्तर कब होता है।
1: पहला स्तर अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। इसकी 2 तारीख आती है। आप दोनों में से किसी एक पर पहला स्तर दे सकते हैं और अगर आप द्वितीय या तृतीय स्तर के लिए चयनित हुए तो उनकी तारीख आपको उपलब्ध की जाएगी।
0: और ये बताइए अगस्त के महीने में तो सिलेबस तो खत्म होता नहीं है, जैसे 6वीं के कोई बच्चे को साइंस और मैथ्स लेना है तो उसका तो कुल मिलाकर 2-3 चैप्टर ही हुए रहते हैं, तो फिर वो कैसे तैयारी करेगा पूरे सिलेबस की।
1: मेरे हिसाब से तो अपना स्कूल का सिलेबस किसी भी व्यक्ति को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए

0: किसी भी परीक्षा को देने से पहले अगर आपका पूरा सिलेबस ही आपको क्लियर है तो आप कोई भी परीक्षा चाहे VVM हो या कोई और ओलंपियाड भी हो तो उसमें आप अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं।
1: मतलब यदि छठवीं का बच्चा है तो छठवीं के साइंस और मैथ्स को उसको इस परीक्षा के पहले एक बार पूरा तैयार करना पड़ेगा।
0: जी जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए कि आप पूरा सिलेबस तैयार करें।
1: ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। और ये जो पहला जो स्तर है और दूसरा स्तर है, क्या इसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है?
0: जी ये एक ऐप के थ्रू आपकी पहली और दूसरे स्तर की ऑनलाइन परीक्षा होती है। पहले स्तर में आप सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरे स्तर में आप कोशिश करिए कि आप सटीक से सटीक उत्तर दीजिए क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले दो लेवल ऑब्जेक्टिव यानी चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से कोई एक को सही टिक करना है। और उसके बाद ऑफलाइन लेवल्स में सब्जेक्टिव एग्जाम भी आ जाते हैं।
1: तो ये आपके घर बैठकर आप दे सकते हैं परीक्षा या कहीं उसके लिए आपको जाना पड़ता है ऑनलाइन देने के लिए?
0: आप इसको घर बैठकर एक ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं या अगर आपके पास वो ऐप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कई सारे स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स में भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं।
1: वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ेगा। यदि आपके स्कूल में कंप्यूटर है तो वहां दे सकते हैं, आपके घर में भी है तो। क्या उसका कोई समय रहता है? समय भी देते हैं इतने बजे से इतने बजे तक?
0: जी जो 2 तारीख प्रदान की जाती है उसमें आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। तो इसमें किसी तरह की नकल और इसकी कोई चिंता रहती है कि लोग ऐसा करते होंगे?
0: नकल जो है उसका रोकने का तरीका एक ऐप होता है जिससे हम VVM देते हैं जिसका नाम है सेफ एग्जाम ब्राउजर। ये सेफ एग्जाम ब्राउजर क्या करता है, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करता है और देखता है कि आपकी आंखें अपनी स्क्रीन पर फोकस्ड हैं या कहीं और घूम रही हैं।
1: वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब किसी तरह की गलती या गलत आचरण इसमें नहीं किया जा सकता है।
0: जी
1: वाह, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और ये 2 स्तर आपने निकाले, तो ये 2 स्तर में क्या ये राज्य स्तरीय सिलेक्शन होता है?
0: हाँ, पहले 2 स्तरों में हर राज्य से बच्चे चयनित किए जाते हैं। पहले इस स्तर को इस एग्जाम में 3 लाख बच्चों ने पूरा सारे देश मिलाकर दिया। उसके बाद से उन 3 लाख बच्चों में से 30 से 40 हजार बच्चे द्वितीय स्तर के लिए चयनित हुए और उससे हर एक राज्य से 25 बच्चे स्टेट लेवल कैंप जो कि ऑफलाइन होता है वो तृतीय स्तर के लिए चयनित हुए।
1: तो इस बार आप कहाँ गए थे?
0: इस बार एक रायपुर में विद्यालय है रेडिएंट वे स्कूल करके, उसमें 3रा स्तर जो था वो एग्जाम वहीं पे हुआ।
1: ओके, तो वहाँ कितने बच्चे आए थे?
0: वहाँ पर प्रत्येक कक्षा से 25, तो अगर हम 6 कक्षा ले लें तो एक हमें 150 के आसपास बच्चे थे
1: पूरे राज्य के।
0: पूरे राज्य।
1: और यहाँ से कितने बच्चों का चयन हुआ राष्ट्रीय स्तर के लिए?
0: हर एक कक्षा से 2 बच्चों का चयन होता है, तो 12 बच्चे इस बार चयनित हुए थे छत्तीसगढ़ से।
1: तो बहुत गौरव की बात है कि इस बार सारांश यानी आपका सिलेक्शन इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ। और आप फिर नेशनल कैंप के लिए कहाँ गए?
0: नेशनल कैंप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में था।
1: वाह,
0: और यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया गया और यहाँ की लैब्स में हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए।
1: तो पहले से ही आपको पता रहता कि क्या एक्सपेरिमेंट देने वाले हैं?
0: नहीं, हमें सिलेबस पता रहता है, उनकी वेबसाइट पर ही मिल जाता है आपको। और उस सिलेबस में आपको सेगमेंट्स दिए होते हैं कि 40% मार्क्स आपके एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं, 20% एक लिखित एग्जाम का होता है और बाकी 40% कुछ गतिविधियां होती हैं, आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाता है वहां पे, उन सब का होते हैं मार्क्स।
1: क्या बात है। तो उसके बाद जो जोनल है जो कॉम्पिटिशन था राष्ट्रीय कैंप में, उसमें कितने राज्य थे आपके साथ?
0: जोनल में हमें 7 राज्य और यूनियन टेरिटरी हमारे साथ थी, जिनमें थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली एवं गुजरात।
1: वाह, तो इन सभी में आपने छत्तीसगढ़ का झंडा ऊंचा किया
0: जी।
1: और स्थान प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है?
0: खुशी तो बहुत है, लेकिन विद्यार्थी विज्ञान मंथन आपको सिर्फ साइंस पढ़ाने के लिए नहीं है, ये वैज्ञानिक ढूंढने के लिए है। तो एक वैज्ञानिक रुचि भी आ गई है मेरे को कि कोई भी चीज मेरे को दिखती है तो एक प्रश्न आता है क्यों।
1: क्या बात है।
0: तो वही रुचि होनी चाहिए कि कोई भी चीज है तो क्यों और कैसे हो रही।
1: आपके साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और VVM के इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको कौन सा मंत्र आप बताओगे कि वो भी चयनित होकर आगे बढ़ सके?
0: मंत्र तो ये है कि सबसे पहले तो परिश्रम करते रहें, लगातार प्रयास के साथ हो सकता है कोई भी चीज। आप विज्ञान में रुचि रखें, आप समझे कि कोई चीज हो रही है तो ये

0: साइंटिफिक जो चीज हो रही है कैसे हो रही है, एकदम डीप तक जाए अगर आपको समझ आ रहा है। मेरा तो मंत्र ये है कि आप अपनी उम्र से 5 साल घटा दीजिए। अगर आप उस उम्र के किसी व्यक्ति को कोई चीज समझा पा रहे हैं, मतलब आपको वो आती है।
1: वाह, ये बड़ी बढ़िया बात आपने बताई, और सही बात है, किसी विषय का ज्ञान तभी सही होगा कि आप उसको सरल ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। जितना सरल सहज ढंग से कोई बात किसी को समझाई जा सकती है, वही उस गहरे ज्ञान का प्रतीक है
0: जी।
1: बहुत सही बात और बड़ी गूढ़ बात आज अपने अपने नन्हे दोस्तों को बताई है। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप दूसरे कई सारे शौक रखते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि आप चेस भी खेलते हैं, उसमें भी आपने अच्छा रैंक हासिल किया, फुटबॉल खेलते हैं, और क्या क्या खेलते हैं?
0: फुटबॉल और चेस में ज्यादातर खेलता हूँ, बाकी क्रिकेट में एज अ शौक की तरह खेलता हूँ, बाकी कई सारे खेल मेरे को देखने का शौक है। और मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो खेल या कोई हॉबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका उससे मानसिक स्वास्थ्य बहुत सही रहता है।
1: सच बात है, यदि मैं APJ अब्दुल कलाम जी को कहूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करूँ, तो ये सब बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी रहे हैं। वाकई में विज्ञान और संगीत का कोई संबंध आपको नजर आता है क्या?
0: हाँ, और भारतीय संगीत और भारतीय विज्ञान का तो और ज्यादा संबंध है। हमें VVM पढ़ने के लिए भेजा गया जब, तो हमें हर साल इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो म्यूजिक के ही ऊपर लिया जाता है।
1: वाह,
0: तो इस बार हमें सुशीर वाद्य दिए थे। सुशीर मतलब हॉलो, यानी जो खोखले वाद्य यंत्र है जिसे हम हवा से बजाते हैं। तो ये सुशीर वाद्य यंत्र की साइंस जो है बहुत पुराने समय से है। भारत का धर्म, भारत का विज्ञान जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ना कि दूसरे देशों में जहाँ धर्म और विज्ञान एक अलग रास्ते पर चलते हैं।
1: बहुत बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हो भाई। छोटे बच्चों से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने शौक, अपने खाने पीने, अपने मनोरंजन की बातें ज्यादा अच्छे से बोलेंगे। यदि वो विज्ञान, धर्म और संगीत को जोड़कर किसी देश की संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी आज की पीढ़ी कम से कम इन सभी बातों को जोड़कर एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा तो दे सकती है। चाहे वो संगीत हो जो मन को शांत करे, चाहे धर्म जो जीवन का सही रास्ता दिखाए, चाहे विज्ञान हो जो हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करे
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत, बड़ी ही सार्थक रही। और आप हमारे सुनने वाले छोटे दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप प्रयास करते रहें, चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, भले आपको खेल में जाना है, भले आपको पढ़ाई में जाना है, किसी भी चीज में पूर्ण प्रयास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कुछ भी करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर प्राप्त होगी।
1: वाह, सफलता का एक सरल सीधा सा मंत्र कि लगातार कंसिस्टेंसी बनी रहे और निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ प्रयास करना जरूरी है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके जीवन में आपके मंत्र सदा आपको सफलताएं दें, आपको आगे बढ़ाएं, और आप मानव जाति के लिए कोई बहुत अच्छा उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत करें
0: जी। धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: बच्चों, आप थे विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा के राष्ट्रीय स्तर के विजेता सारांश दुबे, जिनसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। और आज की इस छोटी सी बातचीत से हम सभी को सीख भी मिलती है बच्चों कि सफलता किसी जादू से नहीं, लेकिन नियमित अध्ययन, जिज्ञासा, अनुशासन और निरंतर प्रयास से मिलती है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे उन नन्हे साथियों से जो कि अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से हमारा मनोरंजन करेंगे। बच्चों, हमारे साथ हैं प्यारी सी नन्ही सी गीतिशा सिंह, जो कि हमें कविता सुनाएंगी ईश्वर स्वर्ग में है।
1: नमस्कार, मेरा नाम है गीतिशा सिंह छतई। मैं आप

0: धन्यवाद।
1: अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं श्रेया राजेंद्र सर्पे और हरमनप्रीत कौर। श्रेया केंद्रीय विद्यालय में कक्षा नवमी की छात्रा हैं और हरमनप्रीत लॉयला स्कूल में कक्षा नवमी की छात्रा हैं। आप दोनों एक छोटे से नाटक की प्रस्तुति देंगी जिसका शीर्षक है दोस्ती की परीक्षा।
2: या जरा रुकना, नहीं रुकूंगी। पहले बताओ आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है?
3: क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हो कि नहीं।
2: अरे अगर दोस्त नहीं मानती तो तुम्हारा रोज उसका टिफिन कौन खत्म करता?
3: अच्छा तो दोस्त का मतलब मेरा टिफिन खाना है?
2: नहीं हरप्रीत यार, दोस्ती का मतलब टिफिन आधा शेयर करना और खुशी आधा बांटना।
3: क्या बात है यार, लेकिन एक सवाल है तुझसे, दोस्ती की पहचान कैसे होती है?
2: बहुत आसान है, जब पूरी क्लास तुम्हारी कोई गलती गिन रही हो और उन्हीं में से एक दोस्त तुमसे धीरे से कहे चल कोई बात नहीं अगली बार मिलकर सुधारेंगे, वही सच्ची दोस्ती है।
3: और जब तुम उदास हो बिना पूछे कोई तुम्हारे पास आकर कहे क्या हुआ मैं हूँ ना, वही हमारा दोस्त है।
2: बिल्कुल, दोस्त वो नहीं जो हर समय हाँ में हाँ मिल रहा है, दोस्त तो वो है जो गलत काम पर प्यार से रोके।
3: यानी अगर मैं कहूँ चलो होमवर्क छोड़कर पूरे दिन खेलते हैं,
2: तो मैं कहूँगी पहले होमवर्क फिर खेल भरपूर, यही है असली दोस्ती।
3: अच्छा एक और सवाल, अगर दो दोस्तों में कभी लड़ाई हो जाए
2: तो जीतने की नहीं मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बस जीत कर दोस्त खो देना कोई समझदारी नहीं है।
3: सही बात है, मेरी दादी भी कहती है जहाँ अहंकार आ जाए वहाँ दोस्ती टिक नहीं पाती।
2: और हाँ, कभी अपने दोस्तों की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर दोस्त अपनी अलग अलग पहचान और अपनी अलग खूबी के लिए जाना जाता है।
3: सच में कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई चित्र बनाता है और कोई सबको हंसाता है। वाकई हर दोस्त खास होता है।
2: एक और बात, दोस्ती में धन्यवाद और माफ कीजिए जैसे छोटे छोटे शब्द भी बड़े काम आते हैं। हमारे अच्छे संस्कार दोस्ती को और मजबूत बनाते हैं।
3: तो चलो आज फ्रेंडशिप डे पर एक छोटा सा वादा करें,
2: हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे,
3: किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे
2: और नए दोस्त भी बनाएंगे,
3: अपने दोस्तों को हमेशा सही राह दिखाएंगे।
2: क्योंकि दोस्ती वह पौधा है जो विश्वास से उगता है, अपनापन से बढ़ता है और जीवन भर खुशियों की छांव देता है।
3: हमारे सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।
2: मुस्कुराइए, दोस्त बनाइए और दोस्ती को हमेशा निभाइए। नमस्कार।
1: अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं सोम्या राजेंद्र सर्पे, जो कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहतराई में कक्षा तीसरी में पढ़ती हैं और आप सभी को गीत सुनाएंगी।
4: जिंदगी सवार दू इतना ही बहार दू, दुनिया के बदल दू मैं तो प्यारा सा चमककार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आधे तम तामो सच, अब ये मेरा सपना है कि सपने फिर सच में करूँ, आसमान को छू लू तितली बनू रू या हेलीकॉप्टर,
1: बच्चों आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम रूपी सफर का आनंद आप सभी ने जरूर उठाया होगा। आप सभी हमें पत्रों के द्वारा बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर, पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए अपने संदेश भेज सकते हैं। कार्यक्रम में संयोजन एवं प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की। और बच्चों अब अनुमति दीजिए आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
5: जय हिंद।

आओ बच्चों, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी लिंटा की। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सत्यमेव जयते फिल्म से। आरको और तुलसी कुमार की आवाज़ें हैं। गीत और संगीत आरको का।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा

0: और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: कार्यक्रम नए तराने का पहला गीत आपने सुना था सत्यमेव जयते फिल्म से। आर्को और तुलसी कुमार की आवाजें थी, गीत संगीत आर्को का था। और अब आइए सुनते हैं क्रीचर फिल्म का गीत है, अरिजीत सिंह की आवाज, गीत संगीत टोनी कक्कड़ का। लीजिए पेश है ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: नए तराने कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना।

0: अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
1: नई सुबह के साथ नए संदेशों के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। यातायात संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की शहरी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी प्रमुख सड़कों में सभी ग्रामीण सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क बना हुआ है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग राजकीय राजमार्ग जैसी मुख्य सड़कों में होटल ढाबा या पेट्रोल पंप के पास भारी वाहन ट्रक ट्रेलर कैप्सूल आदि रात के समय देर तक खड़े रहते हैं। कई वाहनों में पार्किंग लाइट या बैक लाइट भी बंद रहती है। इनके चालक वाहन के अंदर सो रहे होते हैं। इसी प्रकार लंबी दूरी के वाहन चालक भी मुख्य सड़क में वाहन का एक पहिया नीचे उतारकर बिना किसी इंडिकेटर या पार्किंग लाइट जलाए सो जाते हैं। या वाहन में कोई खराबी आ जाने से तो सड़क में ही बिना किसी संकेत के वाहन खड़ा कर देते हैं। ये वाहन बहुत अधिक घातक हुआ करते हैं। वस्तुतः इस मार्ग में दौड़ रहे अन्य वाहन के चालक को सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट में सामने सड़क में खड़े वाहन का ठीक से आभास नहीं हो पाता और ये वाहन पीछे से खड़े वाहन से टकरा जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी लापरवाही के चलते जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं, अनेकों अनाथ हो चुके हैं। इस संदेश के माध्यम से पुनः ऐसे लापरवाह वाहन चालकों को हिदायत है, सड़कों में इस प्रकार खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा ना करें। संबंधित होटल ढाबा पेट्रोल पंप के संचालक की भी जिम्मेदारी है कि अपने पास इस प्रकार सड़कों में वाहन को खड़ा ना होने दें। साथियों, यद्यपि यातायात के वाहन 2400 घंटे सातों दिन सड़कों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तथा ऐसे वाहनों को तत्काल हटा भी रहे हैं, फिर भी यदि आपको कहीं ऐसी

0: स्थिति में कोई वाहन खड़ा दिखाई दे तो पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल नंबर 9479193099। जी हाँ, नंबर पुनः सुने 9479193099 में फौरन सूचित करें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी की जान भी बचा सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से। और अब आइए सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम में अगला गीत। मनोज मुंतशिर ने लिखा है इसे, आरको का संगीत है और बी प्राक की आवाज़।

अब है जोधपुर कर की आवाज में, आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का गाना। इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

0: जीरो फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं, अब से शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: विविधा

0: आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। अब से शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के विविधा के अंक में प्रस्तुत है सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ए जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह।
1: नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सृजन भारती है उसका शीर्षक है ए जिंदगी गले लगा ले। आम जिंदगी में जो तनाव होते हैं और दबाव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सब सोचते हुए आज का ये विषय रखा है ए जिंदगी गले लगा ले। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर नयन वर्मा। प्रोफेसर नयन वर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संगीत में भी उनकी बहुत जबरदस्त दिलचस्पी रही है। 1993 से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 11वीं और 12वीं के छात्रों को नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुमति ओझा मौजूद हैं जो कि बहुत जानी मानी काउंसलर हैं और पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रही हैं। मुख्य अतिथि विभा सिंह हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसी सीरीज लिखी है और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े काम किए हैं। आज ममता झा मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं, तो हम आपस में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और चीजों के निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ममता सिंह के हाथों ये मंच और ये माइक्रोफोन।
2: नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। हम सबसे पहले डॉक्टर सुमति ओझा से हम जानना चाहते हैं। सुमति जी, बताइए कि आजकल लोग समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा करते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जैसे इग्नोर कर देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
3: आपका सवाल बहुत ही एप्ट है। मतलब आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग अपना सिक्स पैक दिखाने बहुत आसानी से बाहर निकल के दिखाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है जी, तो उसे छिपाते हैं
2: जी।
3: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये बदल रहा है, थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है फिल्मी दुनिया में, मानती हूँ,
2: और चर्चित
3: और मेरी फेवरेट भी है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा वाह, ये कुछ इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी की तरफ। और साथ में उनकी माता जो है, मम्मी जो बैठी थी, उनके चेहरे की तरफ मैं देख रही थी जब वो अपनी कहानी बता रही थी। इट नीड्स, मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कहते हैं ना कि एक आत्मशक्ति टू टेल और ये बताना और पब्लिक डोमेन में रखना कि मेरी बेटी इस प्रकार से इस दौरे से गुजर रही थी। वो उन माओं में से नहीं थी जो ये कहे कि तुम ये बताओ मत वरना आपके करियर को क्या होगा, आपसे शादी कौन करेगा, ये सवाल उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने बेधड़क इस बात को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए अगर सहारा या हेल्प या जो कहो एक्सपर्ट ओपिनियन जो आप ले सको, तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये कहावत है इंग्लिश में, तो जल्द से जल्द उसका एक उपाय ढूंढ लो। और आई थिंक उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी ये बताना शुरू कर दिया कि वो भी इस प्रकार से इस तरह के डिप्रेसिव फेज या जो भी इमोशनल इश्यूज है इसको बताने में वे झिझकते नहीं थे।
2: बिल्कुल सही कह रही है। अब मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाई से सबसे ज्यादा खराब होता है, कमजोर होता है, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे घबराते हैं और यही करियर का

0: बेस भी होता है। और हमारे साथ फिजिक्स के प्रोफेसर नैन वर्मा जी हैं, तो हम नैन जी से पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स को लेकर लोग बहुत घबराते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मन में होता है कि फिजिक्स कैसे करें कि रटना ना पड़े।
1: इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप साइंस लेते हैं सो बेसिकली आप शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड से ही अपना मन बना चुके हैं कि मुझे साइंस लेना है, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप मेंटली तैयार होके आते हैं।
0: जी
1: तो जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप मॉब साइकोलॉजी की वजह से आ रहे साइंस में, लेकिन अब जब आपने साइंस लिया है तो देर इज नो टर्निंग बैक। तो उसकी पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है ये आपको पहले से ही समझ के आना है। अपने स्कूल लेवल पे फिजिक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए बिकॉज बच्चे बहुत वीक बैकग्राउंड के साथ आते हैं, सॉरी टू से, बट जब हम बच्चों को 11th 12th में पढ़ाते हैं तो 8th 9th 10th में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको 11th और 12th में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहा है। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 6th या 7th स्टैंडर्ड में उसके फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है, तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े। मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब US जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो
0: जी
1: उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए।
0: जी
1: अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, सीटी
0: जी
1: स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
0: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है, तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है?
1: अगेन यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कम करना चाहिए। और अगर उनको बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11th 12th के मार्क्स पे एडमिशंस होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूँ तो 11th 12th का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ्स है लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है। बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तफाक रखूंगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर कम होना चाहिए उनको।
0: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों

0: को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
1: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता
0: ओ,
1: है
0: नई
1: और
0: बात है ये.
1: एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल.
1: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है। देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं,
0: जी
1: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो और बाकी का छोड़ दो, तो
0: जी
1: आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी
1: समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं,
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो जानते हैं कि देर विल बी अ लिस्ट और वो
0: जवाब
1: चेंज
0: क्या देना
1: होना नहीं
0: होता
1: चाहते हैं।
0: है.
1: और मैं बच्चों की तरफ हूँ, बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में। देर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर। एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
0: बिल्कुल.
1: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम। वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो। तो आई थिंक समवेयर देर इज, मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
0: बिल्कुल.
1: तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो। एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स,
0: जी
1: ये
0: जी
1: जरूरी है। क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग, ये एक स्किल है,
0: जी
1: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है, तो ये भी एक स्किल्स किट है। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इंफॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है,
0: बिल्कुल.
1: देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है। वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है। आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो, आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, आप
0: बिल्कुल.
1: 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है,
0: जी.
1: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120। किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है।
0: जी
1: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो वो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ। बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया, ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है, और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो। और अक्सर मैं
0: सही
1: उनसे
0: बात है,
1: और कभी
0: बिल्कुल.
1: बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना, उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ कि
0: जी
1: यहां कुछ ठीक नहीं है। सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड

0: इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस.
1: जी
0: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ, मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते. वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे,
1: जी
0: आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे की कुछ पांच अच्छी क्वालिटीज क्या हैं. और वो नहीं बता पाते हैं,
1: क्या बात है, ये तो
0: वो सोचने लगते हैं.
1: बिल्कुल
0: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे पांच इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए,
1: तो
0: तो
1: दस
0: दोनों
1: बताते
0: मिलके
1: हैं,
0: शुरू हो जाते हैं
1: दस
0: कि आपको पता नहीं ये
1: पंद्रह
0: कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है. और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है, और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये
1: बिल्कुल
0: माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा. तो
1: और
0: मुझे ये करना पड़ता है.
1: तो एक नई
0: तो
1: बात सामने आई है, सुमति जी ने कहा कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, तो नैर जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो मैं जब तक जानता हूँ मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 इयर्स प्लस 50 इयर्स प्लस प्रोफेसर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मेच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे, तो मुझे उसके जैसे बच्चे बन के पढ़ाना होता है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नैन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं, डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकेंड का होता है, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकेंड में शांत हो जाएंगे, एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम
1: जी
2: योर एकेडमिक फादर। तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूँ, तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूँ, और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेन जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा।
1: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां. ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर की
2: डेफिनेटली
1: तरह?
2: है, एग्जाम्पल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है, मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था, तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला। पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश। इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंडफादर और फादर हमको बोलते थे कि वैकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो, तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था, तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग।
1: जी
2: तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है। तो
1: जी
2: जो बच्चे 8th 9th में भी हैं अभी, और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है।
1: ओहो
2: तो आपका फियर अगर 8th 9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा, फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं,
1: जी
2: अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे, अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नैन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूँ, मैं
1: बिल्कुल
2: तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तब भी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स इज मैथ्स,
1: क्या
2: न्यूटन रोट
1: बात
2: द
1: है
2: बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली
1: जी.
2: अ मैथमेटिशियन, आइंस्टाइन जी ने और जिसने भी जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
1: क्या बात है, बहुत सही बात कही है और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है. हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं. तो एक स्टूडेंट है वो लॉ कर रही है, और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें.
3: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ. हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज नॉट जस्ट एकेडमिक.

0: रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर. यस
1: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंजाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंजाइटी और फियर में एक फर्क है। एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जहाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप जंगल से जा रहे हैं, वहाँ कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंजाइटी कहते हैं।
2: जी
1: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
2: बिल्कुल
1: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूँ, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं, और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
2: क्या बात है, बहुत
1: तो
2: सही बात।
1: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो। एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन। तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड
2: बहुत
1: कीप
2: सही
1: योर
2: बात है।
1: सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं, प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल। तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस। और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा, ये सिर्फ 60+ के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है। इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक।
2: नैन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं।
3: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है, तो वो उसे होता ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज़ नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स। कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो
2: बिल्कुल
3: पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा सुबह 1 बजे 2 बजे पढ़ता है, तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग,
2: जी।
3: बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में आते वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए। आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी वो बिल्कुल होना चाहिए. इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी
2: बिल्कुल
3: साइकिलिंग,
2: जी
3: इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल. तो मेरी हर एक पेरेंट्स

0: रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट. वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ प्रेशर एंड वेन यू स्टडी इट आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली आपके पढ़ने में फर्क होता है. सी एज फार एज ब्रेन इज कंसर्न, सम पीपल आर गिफ्टेड, लेट अस नॉट कंपेयर दैट वे, कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है. ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट. कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से, जैसे तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है. कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज पढ़ते हो, खुशी खुशी जो भी चीज करोगे, उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है.
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं वेदांत, परिचय दें वेदांत और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछें।
2: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ, जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं। और बात आती है अपस्किलिंग, अपस्किलिंग तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं, एक और नई चीज़ मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद खुद ये चीज फेस कर रहा हूँ, तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
1: आप इस जनरेशन के हो, इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है। हम जब
2: क्या बात
1: छोटे
2: है.
1: थे ना, तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर हैं। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नाइन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज अ काउंसिलर, डेस्टिनेशन जो भी हो, जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
3: क्या बात है,
4: सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात
1: वरना
4: आपने
1: क्या
4: कही।
1: हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और उन्होंने
4: जी जी
1: बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए। और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल, तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू
4: जी
1: डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो एआई प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं,

0: वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब दो बार मांग के खाता हूँ इसका मतलब अच्छा ही है।
1: बढ़िया.
0: नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
2: क्या बात,
0: छोटी छोटी
1: सही बात.
0: बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो आपके लिए, कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है. हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए. अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके.
3: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं, और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे. ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न,
1: जी
3: जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई मेन्स हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है.
1: जी
3: लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे, तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं. बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस.
1: जी
3: तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप अपना काम डिवाइड कर लें.
1: जी
3: अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो, 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं,
1: जी
3: हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7:23 या तो 7:24, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते.
1: जी
3: बिकॉज सीधी सी बातें, बच्चा जो दिखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए.
1: बिल्कुल.
3: तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो
1: बिल्कुल
3: बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग.
1: खुद तो
3: सो
1: देखते
3: सबसे
1: हैं.
3: पहले मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको. लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता ही होता है कि एमसीक्यू उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
3: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं. मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यू की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि

0: ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस। यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग
1: बिल्कुल
0: मेरे
1: सही
0: साथ में
1: बात है।
0: पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना
1: सही
0: था।
1: बात है।
0: मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से। आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है। आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं, स्ट्रेस की वजह। अरे बाबा
1: पेट की
0: मेरा इंटरनल हीट उतना है।
1: समस्या
0: तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक। अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है। हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो। मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं। तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरल उसके बारे में सीखना भी होता है। इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं। तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है। वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है, ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीक करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये माइंड ऐसा है, लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
1: जी।
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है
1: जी।
3: ये बहुत

0: इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
1: मुंबई का एक कॉलेज है, नरसिम्हा जी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हा जी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे, सुमति जी से, कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसा
2: हिंसात्मक हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं, और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है, तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
0: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत, मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं, इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीशन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है, और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
2: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली, चूंकि सब जगह अब कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजें, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं, तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: इस मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहाँ टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है, और इनको काउंसिलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू, क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है, और ये फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं है कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल के लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूँ, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है, और वहाँ वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
3: मेरा नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि

0: अगर आप एक हॉलिडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर, या फिर कुछ देयर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहाँ वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो, अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज वी डोंट वांट टू प्लान। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है, है ना? कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है। और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूँ,
1: बिल्कुल,
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल,
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो। ये जो फोन है ना, इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो, इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। अबाउट के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो। स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है। बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है। तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं। बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको।
2: मैं अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है, इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज मैं 7 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है, क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूँ, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूँ, तो आई हैव टू बी माई ओन एडवाइजर। तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं, नोट्स करके मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसकी बाजू में स्माइली करता हूँ कि नयन वेल डन। वैसे आप अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे, तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, राइट? यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड। घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आपको स्माइली दो, हो सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है। हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही, एंड मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग। मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाई स्टूपिड पैटी थिंग्स इन लाइफ।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
3: मेरी बेटी है, 6 साल की है, सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग। ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल, और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में, वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत। तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना, वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके, मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल। तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है। कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
0: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, फिर पूछते भी

0: नहीं है,
1: वो ज्यादा मुश्किल है।
0: वो ज्यादा मुश्किल है। सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहाँ बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है। तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना ये सही नहीं है,
2: बिल्कुल, वो
0: क्योंकि
2: मुझे भी
0: आपने
2: लगता
0: देखा
2: है।
0: नहीं है भूत
2: हाँ
0: को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है। लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है, आई वुड से बी ऑनेस्ट,
2: ऑनेस्ट।
0: बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए। उतना ही दो जितना वो समझ सके। एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग। वेरी गुड।
1: बिल्कुल।
3: मैं जयंत पात्रीकर, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती। अभी जो बात चल रही थी उससे से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग। तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है।
0: डेफिनेटली,
3: हाँ, तो उसकी
0: इसलिए
3: उनके पेरेंट्स की
0: उसकी
3: काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
0: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है। वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
3: अच्छा, हाँ
0: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि
3: जी जी
0: उनके घर पर कौन कौन है,
3: हाँ
0: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन,
3: जी
0: तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है।
3: ओके
0: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन,
1: जी ये बहुत
3: जी
1: सही
3: जी
1: बात कही आपने।
0: दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: माई चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकेंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ
1: क्या
0: कि
1: बात
0: वही
1: है,
0: सजेशन देते
3: वाह।
0: हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
1: जी, एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
4: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। नाउ आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं?
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर, बताइए, आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
5: भले आज मैं टीचर हूं लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स जाते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो। तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसका जो मेन वर्ड होता है, जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो, ओके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी, अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
6: भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूँ तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊँ, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
1: क्या बात
6: और
1: है,
6: आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स

0: राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मेरे मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर ओझा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ।
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: टीचर
1: वाह।
0: ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं
1: क्या
0: आया।
1: बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल, जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल।
0: हम नाराज होते हैं। हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है। हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी,
1: जी।
0: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी, और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी है आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते
1: जी
0: कि
1: जी
0: बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं? तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी
0: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है, बहुत
0: अगर
1: बढ़िया,
0: वो
1: उसको
0: समझदार
1: तालियां।
0: हैं तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है,
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया विभा
0: शुक्रिया।
1: जी, अब वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ऐ जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही

0: युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास माँ कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओत प्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा

0: जाते हैं, जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज में दोस्ताना फिल्म का गीत। अन्विता दत्त गुप्तन ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।
3: जाने नहीं देंगे तुझे

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म का गीत सुनिए, जावेद अख्तर की रचना, शंकर एहसान लॉय की धुन।
1: सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं, उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारी एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं।

हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इसका जो शब्द था, जो हमारी आज की इबारत में भी था, वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ

भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज।

0: दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो, अगर कलम में ताकत हो अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है।

आती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने फिर, तब आप हाथ में किताबें उठाएं जब आपको सोना है, रात के समय में फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही यार के हंसते ही मैं

जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर

फेंक दें ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है, जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: रोग लगा ले।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो

लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने

परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं, बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं, बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवा

0: लोगों का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और

0: 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में

0: रोनाल्डो लेंथोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सुमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ 4th स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4th स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

0: लो।
1: उड़न खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की।

0: यादी।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत, उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाथ दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल

0: शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

तो ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल

अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से ये भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: दिल को जुबान बनाकर अशार कहने की ताकत अता कर देते हैं।
1: बजा फरमा रहे हैं जहां पना, जान की अमा पाऊं शहंशाह, अशार और वो भी ऐसे वक्त में।
0: हाँ हाँ वक्त, हाँ अशार की आमद ऐसे ही वक्तों में होती है। हमारी कमसिनी में मौलवी साहब की बयान की हुई एक बात याद आ गई। कुछ इंसान अपने आप को चौतरफा अंधेरों, मुश्किलों, मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं, तो उनसे नजात पाने के लिए उनका कल्ब बिलबिला उठता है, वजूद थर्राने लगता है, सांसें चीखों में बदल जाती हैं, रोशनी रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं अशार।
1: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या न महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताजा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
0: आंसू बहाए नहीं जाते वक्त खां, ये तो खुद ब खुद बहने लगते हैं। खैर छोड़े इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
0: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
0: क्या कह रहे हैं बख्त खान?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूं, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
0: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के भीड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादा जान।
1: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजे कहाँ गई?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम

0: अंजाम फरमाएंगे?
1: चलो छोड़े बहुत, आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप दादा जान?
1: हाँ।
0: आप
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान,
1: हाँ?
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें। हाँ। और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं?
1: हाँ?
2: रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमना में आबे हयात बहता है। जमना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर, रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले देखते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
1: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।

0: कोई आ रहा है।
1: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
1: क्या खबर लाए बख्श खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
1: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्श खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार, फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
1: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों, पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
1: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज हैं हम।
2: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
1: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
2: बजा फरमा रहे आलीजा, इस मादरे वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाईं, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
2: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाह, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेष बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बात।

0: आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतेहयाब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चलें, सवारी तैयार है।
1: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
1: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे एज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चलें।
1: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
1: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
0: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
1: वो आ गए।
0: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
0: मलिकाए आलिया,
3: मेरे सरताज,
0: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्त खान को बुलवाएं।
4: बट कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
0: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भाग

0: करने से उसी ने रोका।
1: मत्कार इलाही बख्श।
0: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी प्रिजनर, इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
0: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
0: इज्जत मर्डर का इज्जत, तुमने तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
0: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know बादशाह? तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
0: आई नो हम हेटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
2: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
1: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तश्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गईं। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं।

तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा।

0: नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन।
2: ओ,
1: थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बंबई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।

0: वाह
1: और ओम पुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था। और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओम पुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि बम्बई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर,

0: महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था। कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत। और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे। इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है। तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी। और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई, तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास। ओम तो स्ट्रगलर स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद। स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी। मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई had my own self-respect, naturally, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, let's wait, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से उधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वॉज इट, दैट वॉज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली, और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: आप उठ नहीं सकते, वो एक
1: अरे
0: तिलस्म है।
1: क्या बात है, क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला
0: जी, गौरव अवार्ड,
1: जी
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अभी तक
1: नहीं नहीं
0: बधाई
1: कोई
0: नहीं दी,
1: बात नहीं,
0: उसकी
1: कोई
0: भी
1: बात
0: बधाई
1: नहीं।
0: देता
1: तो
0: हूं।
1: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह,
1: दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए। तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो
0: अद्भुत।
1: मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बदूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बदूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन
0: जी
1: नहीं लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये
0: बिल्कुल
1: भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा सा किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे, जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह,
1: प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
0: क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: गुल आनंद भी वहां थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हाँ और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह कह के, उन्होंने कहा कि सही आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क। हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी टेलीफिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं
0: जी,
1: फला करूंगा, मैं धमका करूंगा, ये वगैरह
0: ये
1: वगैरह। और
0: कोई रियल
1: तीन
0: लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
1: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च
0: जी
1: डाला। अच्छा
0: शानदार वाला।
1: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टैंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी, जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं है, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 1 महीना तो लग ही जाएगा।

0: जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी? कहा नहीं, मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो, मैं गुलानंद, बन गई, लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा नहीं, अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो, प्लीज मुझे 1 हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने। कहा फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने, वो थोड़ा सा बदलना था, वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान,
0: योगदान,
1: कंट्रीब्यूशन।
0: एग्जैक्टली, योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई
0: दीप्ति का,
1: डाला।
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। हाँ, तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई, और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था, कि जो हम मांगे, मतलब किसी हद तक, तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे
0: कि
1: प्रोड्यूसर की
0: अच्छे
1: निशानी है।
0: प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई, और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और
1: बिल्कुल
0: वहां भी गुल बहुत ही, मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनी वन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने। अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस, इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ, उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम
1: रवि,
0: विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं, इसको तो लेने, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है,
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना,
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को, लेकिन उसने
1: फारूख कहां से, किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली के।
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की, और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान,
1: दो फिल्में, और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: आगे
0: अच्छा
1: बात
0: आदमी।
1: करेंगे कि कैसे
0: हाँ
1: कथा में
0: हाँ
1: नसीर और
0: या
1: फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना,
0: हाँ
1: वो आगे बात करेंगे।
0: हाँ
1: गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे, हाँ पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया, तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल, लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना
0: जी।
1: तो वो भी हम

0: बहुत सुंदर बरसाती मिली और घर भी इतने अच्छे मिले. फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
1: जी
0: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का. तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए. नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा. सुंदर
1: बिल्कुल।
0: सा
1: और
0: छोटा,
1: वो जिस तरह से
0: हाँ,
1: वो किचन
0: बड़ा
1: चाय बनाते
0: टेस्टफुली
1: हैं।
0: किया हुआ. फिर शबाना का, मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ, अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया. दोस्तों का था वो एक घर. और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका. वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
1: वाह,
0: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया. तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर. किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को.
1: क्या प्यारी बात है। वाह, एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी
0: हाँ
1: चश्मे-ए-बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं,
0: हाँ
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी
0: हाँ
1: बनाई
0: मजाक
1: है।
0: उड़ा था यार, रवि जो गाते हैं, रवि
1: जी
0: और दीप्ति मिलके.
1: जी वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी
0: जी या
1: परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते
0: कभी
1: हैं,
0: जीनत
1: कभी
0: अमान का आता
1: जी
0: है
1: जी
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल,
0: मैंने
1: देवानंद
0: तो
1: वाला तो अद्भुत
0: किया भी, उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी,
1: जी।
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने
0: मैं
1: तो हाँ
0: तोहा
1: कह
0: कर,
1: दी,
0: हाँ, वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वह बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या
0: का.
1: दिल उसमें तो जो
0: हाँ
1: दीप्ति लगी
0: यस, वो
1: है
0: बहुत अच्छा किया रहा, उसने बहुत सुंदर
1: जी
0: किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत.
1: जी ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
1: तीसरी
0: इसका
1: मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ विग पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था. तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए, विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले
0: डांस करवाए ना. तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब वीएचएस का जमाना था,
1: जी
0: हाँ, तो वीएचएस एक मंगवाया मशीन, और वीएचएस कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया. आ, आ, आ, आ, उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है, और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए. मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं. तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह. और वो बड़ा प्यारा, बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल, ये से सही, श्योर श्योर सही, कहता रहे. फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, वो उब गया वो भी, और उसने फिर वो रोका वीएचएस मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूँ. मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो. मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो, मैं नहीं कुछ कहने वाली। तो इतनी मजे की बात होती थी।
1: वाह।

0: वाह वाह, क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी।
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई, हर जाना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के, उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में। हाँ
0: जी जी,
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है, विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती, कैसे काम लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा किया, हमें भी बहुत अच्छे मिले फिर बॉम्बे लैब में, तब थे खन्ना साहब कर, वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बदूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए, तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो, मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यूं करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी।

0: अब आते में इतने ही खुश हो गए, इतनी खुश हो गई फिर काम हमारा चालू हो गया। और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता यार, कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना,
1: गजब।
0: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है। और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना,
1: वाह वाह
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं, बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा, और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया, और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला,
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था। तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया, और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी, उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते हैं वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बद्दोज
0: ना,
1: जी।
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है, को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन
0: क्या,
1: है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई
1: हाँ
0: वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना, लिरिसिस्ट,
1: जी
0: फिर राजकमल का म्यूजिक, और
1: हाँ
0: फिर गाने वाले, और
1: हाँ
0: फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कवाल ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।
2: सारे गम बधा।

0: चकित भय पगरी मगरी काले घोड़े दौड़ पड़ी, काले घोड़े दौड़ पड़ी, काले घोड़े दौड़ पड़ी, काले घोड़े दौड़ पड़ी।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, में कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके, आंसू बह रहे हैं, माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत।

0: वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे और तीनों अवलिया हैं अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं,
0: बिल्कुल।
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या, मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है वो कुछ और गा रहा है वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, वो
0: हाँ
1: तीनों अलग अलग अपना गाते हैं,
0: बिल्कुल
1: हाँ और
0: बिल्कुल।
1: इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस
1: अच्छा
0: इंटरव्यू में प्यार
1: क्या
0: लगावत
1: क्या
0: भी
1: सुनाओगे? ओके
0: सुनेंगे।

0: एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है
1: हाँ,
0: वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली,
0: जी नामावली, जिसमें वो
1: हाँ,
0: एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
1: हाँ यस, टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग, तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल, दासवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या, और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया।

0: कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: हो, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए, बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड, और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
1: कोई
0: कि
1: टकराव होता था?
0: बहुत बार, बहुत बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब बहुत अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सा पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये टुकुडांड, कनकनगर, सिलफली, चाचीडांड, करसी, बूढ़ा डांड, बरबसपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये उदारी, असकला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गाँव, दातीढाप, कंडराजा, बरडांड, घट गाँव, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, जामटोली, बिलासपुर, साजापानी, सोनारपहरी, तीतापाकेर, बर्नीझरिया, खड़ामाचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो

काकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, आमापाली, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा, करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बैगामार, चचिया, कलमी टिकरा, बरपाली, धौरा भाटा, घोटमार, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमा टिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया।

0: बागवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, भटूरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म चमत्कार से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। आनंद बख्शी की रचना और अनु मलिक का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है विजू शाह ने।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात।

0: सुनिए, इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर की रचना है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से, जान तेरे नाम। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत, स्वर दिया है आशा भोसले और कुमार सानू ने, सैद राही की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरजू का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी, आनंद बख्शी की रचना और अनु मलिक का संगीत था। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म बरसात की रात का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की रचना और आरडी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश कवाणकर, चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, लच्छनपुर से हमारे श्रोता साथी हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफजाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक कुमार दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म बरसात की रात का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लोहारीडीह जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी मनीष मयंक जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीता और गीता, चिरमिरी कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता,

यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालीगांव जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सरवत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म गाइड का ये गीत। स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने, शैलेंद्र की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित गर्वी और हिमांश चौहान, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग, बुल्ढाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, वेलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजपति, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, बोटसरा नैला से हमारे श्रोता साथी हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म प्रेम बंधन का ये गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म धर्मवीर से। इस गीत को के लिए ईमेल भेजने वाले श्रोता साथी हैं राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिशिलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, कोलगांव से पांडु चंदन, पांडुरंग कुम्हार, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म धर्मवीर का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे फिर धर्मवीर का ये गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनने का ये भाग अब ही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, संध्या के 6:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कानून की बात में आज जानकारी दी जाएगी किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में। जानकारी देंगे श्री शैलेश दुबे, अधिवक्ता जिला न्यायालय जगदलपुर। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करेंगे सुने। ग्राम सभा का प्रसारण प्रतिदिन की तरह किया जाएगा शाम 7:20 से। आज इसमें बेरा के गोठ में आपसे बातों का विषय होगा जैविक खेती। साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे संजय वत्सल। कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक।

आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जाएगा। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर खेती की बात में जानकारी दी जाएगी। पपीता के खेती विषय पर वाचन स्वर नंद कुमार यादव का होगा। प्रातः 6:45 पर नौविहान कार्यक्रम में सुनिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर चर्चा। सुबह 8:30 में कार्यक्रम अमराई में कलाकार होंगे दुखियाबाई मरकाम, द्वारिका यादव और उनके साथी। सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुति होगी श्वेता पांडे की। सुबह 11 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात में मैथिली शरण गुप्त का साहित्य संसार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सुनिएगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर जानकारी। प्रस्तुति होगी

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है, जिले की चिट्ठी में लीजिए सुनिए कोंडागांव जिले की चिट्ठी। आलेख निखिलेश मिश्रा का है। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं कोंडागांव जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में बीते 23 जुलाई को बड़े कनेरा में जिला स्तरीय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अपने संबोधन में सुश्री उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, मूक अभिनय, पेंटिंग, शॉर्ट फिल्म, स्लोगन और कविता लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्रोताओं, जिले के माकड़ी विकासखंड के ग्राम भीरागांव में बीते 27 जुलाई को भीरागांव से सड़क पारा बरकई तक 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। लगभग 7,03,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क वर्षों से ग्रामीणों की मांग थी। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि सड़क बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके। श्रोताओं, जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बीते 27 जुलाई को साप्ताहिक समय सीमा बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत नियमित और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने, भोजन की गुणवत्ता की जाँच तथा विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एग्रिस्टेक पंजीयन में तेजी लाने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। श्रोताओं, कोंडागांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने पिछले दिनों पंचायत सचिवों और अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण कर हितग्राहियों को पहली किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आत्मसमर्पित माओवाद प्रभावित परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूरा करने और सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने को कहा। श्रोताओं, कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित 48वें आईपीएस इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाई अचीवमेंट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें देश के शीर्ष 5 अधिकारियों में स्थान मिला। प्रशिक्षण में उन्होंने केशकाल घाटी के यातायात प्रबंधन पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया, जिसकी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों ने सराहना की। श्रोताओं, केशकाल थाना पुलिस ने बीते 29 जुलाई को स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम विद्यालय में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चलाने की जानकारी दी गई। अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों को बिना वैध लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने न दें और हमेशा हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। श्रोताओं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर 28 जुलाई को कोंडागांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली नगर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान लोगों को हेपेटाइटिस

0: इस बीमारी, उसके लक्षण, फैलने के कारण और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे कोंडा गांव जिले की चिट्ठी। आलेख निखिलेश मिश्रा का था। आकाशवाणी का जी रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का जी रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत पर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के करी शुरुआत। मुख्यमंत्री आज रायपुर में नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने के विषय ऊपर आयोजित कार्यशाला में हुई शामिल। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराए के आखिरी तारीख ला 14 अगस्त तक बढ़ाएगी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत पर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत करी। वर्चुअल माध्यम ले आयोजित ये कार्यक्रम में ओमन कही कि विकसित भारत पर युवा मन के शारीरिक रूप ले स्वस्थ, मानसिक रूप ले मजबूत और आत्मविश्वास ले भरपूर होना जरूरी है। हम सब ला ये संकल्प लेना है। हमारे युवा नशा के खतरा ला समझें, जागरूक रहें और ओखर ले दूरिया रहे बर संकल्प लेवें। प्रधानमंत्री यहू कही कि नशा मुक्ति पर 100 हफ्ता के जन भागीदारी अभियान शुरू करे जाही और देश भर में हर इतवार के साप्ताहिक कार्यक्रम होही। ए बेरा श्री मोदी है कहीन कि नशा जिनिस के लत है लोगन ला अपन लक्ष्य ले भटका थे और एखर ले देश के ताकत घलो कमजोर होते। ये बेरा प्रधानमंत्री आग्रह करीन कि सामाजिक बदनामी के डर ले नशा जिनिस के सेवन के मामला ला झन लुकाओ। परिवार मन ला शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेत के चिन्हारी करके खुल के गोठबात करके माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री यहू घलो कहीन है कि अलग थलग रहे आने व्यवहार और गोठबात ले बांचे बर अधरतिया ले बाहर रहे या फिर घेरी बेरी पैसा मांगे जैसन आदत नशा जिनिस सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते। ओमन स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक मन ले घलो अपील करीन है कि ओमन नशा जिनिस ले होवैया खतरा ऊपर सरलग लैका मन ले गोठबात करें। बता दें कि ये कार्यक्रम में 28,000 जगह ले 1 करोड़ ले ज्यादा युवा मन हिस्सा लेन। एति छत्तीसगढ़ में घलो नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के तहत राजधानी रायपुर के लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग अब्बर झन युवा, पढ़ैया लैका, स्वयंसेवी संगठन के संग आने आने युवा संगठन के सदस्य शामिल होइन। ये बेरा कार्यक्रम में प्रतिभागी मन नशा मुक्ति के शपथ लेवत समाज ला नशा के दुष्प्रभाव ले मुक्त कराए बर अपन भूमिका निभाए के संकल्प ला दोहराइन। ये मौका में युवा मन ला नशा जिनिस ले होवैया दुष्प्रभाव की जानकारी देगी। संगे संग उमन ला स्वस्थ जीवन शैली अपनाए के संग सकारात्मक सोच राखत राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाए के संदेश देगी। बता दें कि ये अभियान के तहत स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, माय भारत युवा संगठन के संगे संग आने आने युवा संगठन के मदद ले जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने के विषय ऊपर आयोजित कार्यशाला में शामिल होइन। ये मौका में ओमन कहीन कि हाल बेरा ये जरूरत ला चेत में राखत तैयार करेगे नवा आपराधिक कानून देश के न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव के वाहक बने है। ये कानून के उद्देश्य सिर्फ अपराधी मन ला दंड देना नहीं है, भलुक आम नागरिक ला तुरते सुरक्षा और न्याय देवाना है। ये मौका में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कहीन कि ये तीनों नवा आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन ले प्रदेश के न्याय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनी। उमन यहू कहीन कि ये कानून मन के सफलता सिर्फ उखर लागू होए में नहीं भलुक एखर ले जुड़े सबो संस्था मंडहर ले प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। कार्यक्रम ला उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के संग विधि विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव घलो संबोधित करीन।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराए के आखिरी तारीख 14 अगस्त तक बढ़ा दे गए हे। एखर ले ऐसन किसान जो निर्धारित बेरा 31 जुलाई तक अपन फसल के बीमा नहीं करा पाए रहिन तहु मन अब उपराहा बेरा के लाभ उठा के योजना ले जुड़ सकहीं। कृषि विभाग के अधिकारी मन बतइन कि ग्राम स्तर में धान सिंचित असिंचित मक्का और सोयाबीन के संगे संग राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर में मूंगफली राहेर उरीद मूंग कोदो कुटकी और रागी ला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित करे गए हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़थन बाचे समाचार कोती। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हा देश भर के अस्पताल और चिकित्सा संस्थान मन मा सारथी परियोजना के विस्तार की समीक्षा करी। एबेरा देश के अस्पताल मा सारथी परियोजना ला लागू करे बर बड़का और स्थायी ढांचा तैयार करे ऊपर गोट बात हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय है बताई से कि सारथी परियोजना के लक्ष्य प्रशिक्षित युवा स्वयं सेवक मन के जरिया ले मरीज मन के अनुभव लेके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक भागीदारी ला मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG के तैयारी के समीक्षा करी। एबेरा श्री नड्डा कहिन कि परीक्षा ला निष्पक्ष पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाए बर सबो जरूरी कदम उठाए जाए। बता दन कि परीक्षा 30 अगस्त के एक के पारी में करीबन 340 शहर और 1300 ले ज्यादा परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्र सरकार डहर ले राज्य मनला अग्रिम कर हस्तांतरण के निर्णय के स्वागत करीन है। उमन कहिन कि राज्य मन के विकास और जरूरत ला चेत में राखत बेरा ले पहली कर हिस्सादारी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार के संवेदनशील दूरदर्शी और विकास उन्मुखी सोच के परिचायक है। मुख्यमंत्री है यहू कहिन कि छत्तीसगढ़ ला अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में 3,602 करोड़ रुपया मिले ले प्रदेश में अधोसंरचना विकास जन कल्याणकारी योजना और आने आने विकास परियोजना के कार्य ला औ गति मिली। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हकीन है कि VSK ऐप में अवैया तकनीकी समस्या के सेती कोनो घलो शिक्षक मन के वेतन नहीं काटे जाही। ओमन अधिकारी और तकनीकी टीम ला 15 अगस्त तक ऐप के सबो समस्या के समाधान करे के निर्देश दीन है। शिक्षा मंत्री यह कहिन कि शिक्षक मन के सुझाव के आधार में VSK ऐप ला और बेहतर बनाए जाही। भारतीय वायुसेना हा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु अयोध्या भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दे है। ये भर्ती हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम बर होही। एकर बर उम्मीदवार मन 17 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकत हैं। आवेदन फारम IAF के वेबसाइट ले डाउनलोड करके डाक या ड्रॉप बॉक्स के जरिए ले निर्धारित वायुसेना के स्टेशन भेजेल पर ही। आवेदक मन ला 10वीं पास होना जरूरी है। राज्य खेल युवा कल्याण विभाग हा बछर 2025-26 बर राज्य खेल अलंकरण मुख्यमंत्री ट्रॉफी नगद पुरस्कार प्रेरणा निधि और खेल वृत्ति बर पात्र खिलाड़ी मन के संग प्रशिक्षक और निर्णायक मन ले आवेदन मंगाए है। राज्य खेल संघ मन के अनुशंसा के संगे संग आवेदन ला जिला कार्यालय या संचालनालय में 5 अगस्त तक जमा करे जा सकत है। उन्हें पुरस्कार नियम के अनुसार जिन खिलाड़ी मन के मान्यता प्राप्त खेल संघ डहर ले अनुशंसा नहीं करे गए है फिर उनकर उपलब्धि ज्यादा है तहु मन निर्धारित प्रारूप में अपन आवेदन जमा कर सकत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई डहर ले सहयोग केंद्र ला फिर शुरू करे जावत है। काली सोमवार दिन यानी 3 अगस्त ले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहयोग केंद्र में प्रदेश के मंत्री कार्यकर्ता और आम जन के समस्या ला सुनही। ये कार्यक्रम 7 अगस्त तक चलही। एकर बर कार्यकर्ता मन ला मंझनिया 2 बजे ले 3 बजे तक प्रदेश कार्यालय पहुंच के पंजीयन कराल पर ही ओखर बाद मिले टोकन के आधार में सुनवाई करे जाही। रायगढ़ जिला के बंगू रसिया के तीर रायगढ़ पलीघाट रद्दा में 28 ठन जंगली हाथी

0: के दल किंजरत थे। खबर मिलते वन विभाग ह इलाका में हाथी मन ऊपर निगरानी बढ़ा दे है। विभाग ह रायगढ़ पलीघाट रद्दा में अवैया जवैया और गाड़ी चलैया मन ले विशेष रूप ले सतर्क रहे के अपील करे है। और आखिर में प्रमुख समाचार है गांव फिर। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत पर नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की करी शुरुआत। मुख्यमंत्री आज रायपुर में नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित कार्यशाला में हुई शामिल। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा के आखिरी तारीख ला 14 अगस्त तक बढ़ाएगी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का दूसरा भाग।

ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म छाया से। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, हिसार से प्रमोद कुमार, राजकुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां, फरहत जहां, नुसरत साजिया, नाजिया, नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी भोट के, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल और पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, उमा और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पाल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से हमारे श्रोता साथी हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा दिवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री दिवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म छाया का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। स्वर दिया है किशोर कुमार ने, अनजान की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रदेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति साह, टिंकू और मुस्कान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया और इनके साथी हैं, सहारनपुर से आशु और गुनौर से नसीमुल इस्लाम, फरदीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना और विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनने का ये भाग यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। आइए जुड़ते हैं रायपुर केंद्र से।
1: इसके संबंध में अधिवक्ता जिला न्यायालय जगदलपुर के श्री शैलेश दुबे द्वारा दी गई जानकारी। आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में विषय है किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में। बच्चे किसी भी राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि उसके भविष्य की सबसे मूल्यवान धरोहर होते हैं। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्नेह, संरक्षण और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन कई बार सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कुछ बच्चे उपेक्षा, शोषण, हिंसा या अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। वही कुछ बच्चे अनजाने या परिस्थितियों के प्रभाव में कानून के दायरे में भी आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा उद्देश्य केवल कानून का पालन कराना नहीं बल्कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। इसी सोच को साकार करता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि किशोर न्याय व्यवस्था कैसे कार्य करती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री शैलेश दुबे, अधिवक्ता जिला न्यायालय जगदलपुर को। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: बालकों की देखरेख और पुनर्वास संरक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हर प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा से बचाकर उन्हें एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना होता है। भारत में इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह आवश्यक देखरेख संरक्षण वाले बच्चों के लिए कार्य करता है।
2: हाँ,
1: किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 उपधारा 14 में आवश्यक देखरेख संरक्षण वाले बच्चों की परिभाषा दी गई है, जिसमें ऐसे बालक जिनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं है, श्रम विधियों का उल्लंघन करते पाए गए बच्चे, भीख मांगते बच्चे या ऐसे बच्चे जो उनके संरक्षक ही उनको उपेक्षित करते हैं, शोषण करते हैं, मानसिक रूप से बीमार, असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे जिनकी सहायता व देखरेख और संरक्षण करने वाला कोई नहीं होता है।
2: कानून में किशोर और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा क्या है?
1: ऐसे बालक जिनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, जीवन निर्वाह का दृश्यमान साधन नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता असाध्य रोग से पीड़ित हैं
2: जी,
1: ऐसे बच्चे जो घर से भागे हुए हैं, ऐसे बच्चे जिनको परित्यक्त किया गया है, अभ्यर्थित किया गया है,
2: हाँ हाँ,
1: और ऐसे

0: बच्चे जो आपदा से पीड़ित है
1: जी
0: उन बच्चों के लिए यह अधिनियम कारगर साबित होता है।
1: जी किशोर न्याय बोर्ड और कल्याण समिति की क्या भूमिका होती है इसमें?
0: दोनों जो समिति और बोर्ड है
1: हाँ
0: वो आवश्यक देख रेख संरक्षण वाले बच्चों के लिए कार्य करती है। किशोर न्याय बोर्ड जो होती है वो विधि से संघर्षरत बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले की सुनवाई करता है और उनके सुधार के कार्य करता है। बोर्ड जो होती है वो सजा का प्रावधान नहीं रखती है, उसको सुधार की दृष्टि से देखती है
1: जी जी
0: और पुनर्वास वाले मामलों में आगे बढ़ाती है उस कार्य को।
1: तो किसी किशोर के पुनर्वास की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?
0: किसी किशोर की पुनर्वास संस्था से ही होती है जहाँ पर वह रहता है।
1: हाँ
0: वहाँ पर उसको व्यक्तिगत प्लान करके देख रेख प्लान तैयार किया जाता है कि बच्चा यहाँ से जब बाहर जाता है तो उसको कौशल प्रशिक्षण या व्यवसाय प्रशिक्षण कैसे दिया जाए,
1: अच्छा
0: इस बात के लिए कार्रवाई की जाती है।
1: जी सर, पुनर्वास में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या जिम्मेदारियां होती हैं?
0: पुनर्वास का उद्देश्य बालकों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना होता है, उन्हें एक सुरक्षित सम्मान जीवन जीने देना होता है। परिवार की जिम्मेदारी पुनर्वास से शुरुआत होती है, हमेशा घर से ही होती है। परिवार बालक को मानसिक व भावनात्मक सुरक्षा देता है। बालक को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए।
1: जी
0: बालक को उसके अतीत के बारे में कभी भी कलंकित शब्दों का प्रयोग या फिर ताने नहीं देना चाहिए।
1: जी
0: बालकों को बुरी संगति, नशा, अन्य नकारात्मक गतिविधियों से उनको दूर रखना चाहिए और काउंसलिंग का सहयोग लिया जाना चाहिए।
1: जी जी
0: और विद्यालय है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है विद्यालय बालक के भविष्य को संवारने, उसे आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा माध्यम होता है। भेदभाव रहित माहौल देना प्रशासन व शिक्षक को की जिम्मेदारी होती है। बालक किसी भी तरह का भेदभाव का शिकार न हो, बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास, व्यवसाय शिक्षा देना चाहिए। काउंसलिंग की सुविधा, हर स्कूलों में पेशेवर काउंसलर होने चाहिए ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति को समझकर उसका मार्गदर्शन किया जा सके। बालकों को मनोरंजन, खेलकूद, संगीत इत्यादि में शामिल करके उन्हें ऊर्जावान बनाना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। और समाज की जिम्मेदारी कहेंगे तो समाज का नजरिया बालक के पुनर्वास को सफल या असफल दोनों बना सकती है। स्वीकारिता, बालक के अतीत को भूल करके समान नागरिक के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। समाज में उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बालक जब वयस्क हो तो उसे रोजगार मिल सके।
1: जी
0: जागरूकता, पुनर्वास के महत्व को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि समाज में एक दृष्टिकोण बन सके।
1: जी सर, किशोरों के लिए कौशल विकास, शिक्षा और मनोविज्ञान परामर्श का कितना महत्व है, इसके बारे में बताइए।
0: किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की तैयारी के लिए कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श बहुत जरूरी होता है। यह किशोरों को तनाव से लड़ने व सही फैसले लेने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। कौशल विकास जो होता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने, समझने व दुख, परेशानी, उदासी को सही तरीके से संभालने सिखाता है। सही गलत की पहचान व निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है।
1: जी
0: माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों के साथ खुलकर सही ढंग से बात करना हमें बताता है कौशल विकास के अंतर्गत।
1: हाँ हाँ
0: और किशोरों को काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जो होता है, किशोरों को बिना किसी डर, भय, झिझक अपनी बात रखने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। उनकी उलझनों, कुंठाओं और कैरियर संबंधी समस्याओं को समझकर सही रास्ता दिखाती है काउंसलिंग। परिवार का भी सहयोग, माता पिता को यह सिखाना कि अपने बच्चे की मानसिक स्थिति का समर्थन कैसे किया जाए।
1: जी सर, यदि किसी बच्चे के साथ शोषण, बाल श्रम या तस्करी जैसी घटना होती है
0: जी सर,
1: तो उसे किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलती है, इसके बारे में बताइए।
0: बालकों के अधिकार का जैसे उल्लंघन होता है सर
1: जी,
0: तो इसके लिए चाइल्ड लाइन है, 1098 है,
1: हाँ,
0: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है
1: जी,
0: नजदीकी पुलिस स्टेशन है जहां हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई है, हर जिले में स्थित है, और बाल कल्याण समिति है जहां पर हम अपनी शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करवा सकते हैं।
1: जी सर, बाल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है, इसके बारे में बताइए।
0: जी बाल संरक्षण के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जैसे मिशन वात्सल्य है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन है, एवं स्पॉन्सरशिप योजना प्रमुख हैं। ये योजनाएं बच्चों को सुरक्षित माहौल, आर्थिक मदद, अच्छी शिक्षा देने का काम करती हैं। मिशन वात्सल्य है, कठिन परिस्थिति वाले बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए कार्य

0: करती है, जिसमें कि फॉस्टर केयर है, आफ्टर केयर है और दत्तक ग्रहण है।
1: जी
0: और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, कोविड महामारी अन्य कारणों से बच्चे अपने माता पिता को जो खो दिए हैं, यह योजना उनके लिए है। 18 वर्ष तक उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जा सकती है, ताकि वो अपने आगे पढ़ाई
1: उसको जारी रखा
0: जारी कर
1: जारी
0: सके।
1: रख सके।
0: जी सर। और स्पॉन्सर्स भी योजना होता है, मिशन वात्सल्य के तहत जरूरतमंद बच्चों के परिवार को बच्चे के पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता गरीब माता पिता के बच्चों को शिक्षा पोषण के लिए राज्य सरकार हर महीने तयशुदा राशि प्रदान करती है।
1: जी सर, समाज में किशोर अपराध की बढ़ती घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: बढ़ते अपराधों का कारण जो है पारिवारिक विघटन है, माता पिता का बच्चों पर ध्यान नहीं देना, आपसी लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों का गलत दोस्तों के साथ संगत में आकर गलत रास्ते पर चलना, सोशल मीडिया, इंटरनेट व फिल्मों को देख करके हिंसक व नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करना, आर्थिक दबाव, पैसों की कमी या अपने शौक को पूरा करने के लिए बच्चे आजकल अपराध की ओर जा रहे हैं।
1: जी, तो रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए?
0: पारिवारिक संवाद, माता पिता बच्चों में आपसी संवाद होना बहुत जरूरी है, साथ में समय बिताना, संवाद करना, काउंसलिंग, स्कूलों व समाज में बच्चों का सही मार्गदर्शन के लिए काउंसलिंग किया जाए, सकारात्मक गतिविधियां, मनोरंजन, खेलकूद, कला पर किशोरों का ध्यान लगाना ताकि वो सकारात्मक सोच रखें, बच्चों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखना,
1: इस तरह से मतलब रोका जा सकता है।
0: जी हाँ, इस तरह से बच्चों के अपराधों को रोकथाम किया जा सकता है।
1: जी, अभिभावकों को बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए।
0: अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
1: हाँ,
0: उनके पोषण विकास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको उनकी बातों को सुनना समझना चाहिए, और जैसे किसी परेशानी पे जूझ रहे हैं तो उनकी परेशानी को समझें और उन पर उसका निराकरण करने की कोशिश करें।
1: और सुरक्षा के प्रति
0: जैसे कि आजकल के बच्चों को जैसे बताना पड़ता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है,
1: जी
0: ये बताना बहुत जरूरी है। सतर्कता में आज के बच्चे हैं, पढ़ाई में उनको मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो वो नेट का उपयोग करते हैं, उस समय बच्चों पर सतत नजर रखना बहुत आवश्यक है।
1: जी,
0: और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताना है कि बाल श्रम या बाल विवाह ये अगर होते हैं या देखते हैं
1: हाँ,
0: तो उनका विरोध करें, सजग रहें इन चीज़ों पर।
1: जी,
0: और कानूनी बातों का भी पालन करें, क्योंकि कानून के उल्लंघन से ही समस्या खड़ी होती है, तो
1: हाँ,
0: इनको कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है बच्चों को।
1: जी,
0: और समय समय पर बच्चों का काउंसलिंग कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे तनावग्रस्त होते हैं तो उनसे बहुत राहत मिलती है अगर काउंसलिंग होता है तो।
1: जी जी सर, अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है ताकि हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर भविष्य मिल सके?
0: हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन, अनुकूल वातावरण मिले, हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए परिवार, समाज व सरकार को मिलकर काम करना होता है। बच्चों के सामने माता पिता के द्वारा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार न करें, बच्चों की बातें ध्यान से सुने, उनकी परेशानी को समझें और उनका मार्गदर्शन करें, लड़का और लड़की में भेदभाव न करें।
1: जी,
0: अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता दें, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इस बात का ध्यान रखते हुए हर बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है। गुड टच बैड टच की जानकारी दें ताकि वो सचेत रहें इन चीज़ों से। और सतर्कता, माता पिता को हमेशा सतर्क होना चाहिए, अगर बच्चे नेट का उपयोग कर रहे हैं तो वो सचेत रह कर नज़र रखें। और सामाजिक सुरक्षा में बाल श्रम होता है, बाल विवाह होता है, इनका विरोध करें, और कानून की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए ताकि कल के दिन उनका वो उल्लंघन न कर सके, और हर बच्चे को काउंसलिंग किया जाए ताकि वो तनाव से मुक्त रहे।
1: जी सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमने जाना किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में, और जानकारी दे रहे थे श्री शैलेश दुबे, अधिवक्ता, जिला न्यायालय जगदलपुर। आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: कानून की बात, इसमें अभी आप सुन रहे थे किशोर न्याय संरक्षण एवं पुनर्वास के संबंध में अधिवक्ता जिला न्यायालय जगदलपुर के श्री शैलेश दुबे द्वारा दी गई जानकारी। यह आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की, कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। मुख्यमंत्री आज नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने इस विषय पर रायपुर में आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि वीएसके ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं, पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग थलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इधर छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, माय भारत युवा संगठन तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें नशा मुक्ति शपथ, रैलियां, पोस्टर चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लघु फिल्म प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान तथा सामुदायिक संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने, इस विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए आपराधिक कानून देश की न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन के वाहक बने हैं। इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है।
2: जो नए कानून देश में लागू हुए हैं, उनका त्वरित कानून लागू हो और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है। ये विभिन्न सत्रों में कार्यशाला चलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून है, बीएनएस है, वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
0: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव

प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, त्वरित और तकनीकी आधारित बनेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव लेकर आए हैं। इन कानूनों की सफलता केवल उनके लागू होने में नहीं बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और विधि तथा विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही पाली में लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इससे ऐसे किसान जो निर्धारित समय 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे, अब अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर इस योजना से जुड़ सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम स्तर पर धान सिंचित, असिंचित, मक्का और सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अग्रिम कर हस्तांतरण के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय से पहले कर हिस्सेदारी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की संवेदनशील, दूरदर्शी और विकासोन्मुखी सोच का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में 3,602 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने से प्रदेश में अधोसंरचना विकास, जन कल्याण योजनाओं तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि वीएसके ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी टीम को 15 अगस्त तक ऐप की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों के सुझावों के आधार पर वीएसके ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु आयोधी नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम के लिए होगी। उम्मीदवार 17 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म IAF की वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सामान्य डाक या ड्रॉप बॉक्स के जरिए निर्धारित वायुसेना स्टेशन पर भेजना होगा। आवेदक के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा फिर से सहयोग केंद्र शुरू किया जा रहा है। कल सोमवार 3 अगस्त से भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित इस केंद्र में प्रदेश के मंत्री, कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे। ये कार्यक्रम 7 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश कार्यालय आकर पंजीयन कराना होगा। आवंटित टोकन के आधार पर सुनवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के बंगुरसिया के आसपास रायगढ़ पलीघाट मार्ग पर 28 जंगली हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। खबर मिलते ही वन विभाग ने इलाके में हाथियों की निगरानी बढ़ा दी है। वहीं विभाग ने रायगढ़ पलीघाट मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बोरीडांड चिरमिरी लाइन के लिए ई निविदा आमंत्रित की है। ईपीसी मोड पर होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 602 करोड़ रुपए है और इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 2 श्रमिकों की कल रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हाल ही में इस स्टील प्लांट के एक फर्नेस से पिघला हुआ लोहा निकलकर श्रमिकों पर गिर गया था, जिससे 4 श्रमिक झुलस गए थे। खैरागढ़ दुर्ग मुख्य मार्ग के पास आज हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। और धमतरी जिले के नगरी इलाके के कर्रा घाटी गांव में एक तेंदुए का शव मिला है। इस तेंदुए ने बीते 31 जुलाई को इस गांव के 2 लोगों पर हमला किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
मुख्यमंत्री

0: आज नवीन आपराधिक विधियों के माध्यम से डिजिटल न्याय को सशक्त बनाने इस विषय पर रायपुर में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि वीएसके ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत और रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास, साथ में हैं रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया, जालंधर से संदीप जटोलिया, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और साथ में हैं राजेंद्र कटारे, भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, भाटापारा से ही हमारे श्रोता साथी हैं बच कमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चुवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, नागपुर से वैशाली शैलेश कवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि कवाणकर, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाखरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाखरे, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन। डीजे श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत।

श्रोता साथी हैं पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हिरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर और देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, बोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र सिंह ओबराय, दिल्ली से सुखविंदर सिंह, भिलाई 3 चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरु किरत और गुरु शब्द सिंह राहुल, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, मुरादाबाद से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म उस्तादी उस्ताद से फिल्म का ये गीत भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजें हैं, रविंद्र रावल की रचना और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रजापति और इनके साथी हैं जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से हमारे

ईमेल करेगी सुनी आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए सुनिए फिल्म होटल से। स्वर दिया है आशा भोसले और मनहर उदास ने, इंदिवर की रचना और उषा खन्ना का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले श्रोता साथी हैं बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, रतरेंकी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थादी, तृप्ता, प्रियंका, प्रियम, प्रशांत, वामिका और वाणी थादी, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा श्याम कुंवर, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावस से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श और आतिका, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, समर्थ और सार्थक नामदेव, तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह सहोदरी मरकाम, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, महाराष्ट्र से नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, लुथरा खमरिया से नकुल शाह, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म होटल का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म होटल का गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम राम। रिमझिम बारिश संग चिखला मा सनाए हैं किसान, रिमझिम बारिश संग चिखला मा सनाए हैं किसान, जांगर टोर का माथस भैया तही भुइया के भगवान। तो निश्चित रूप से संगवारी हो, आपके जांगर के बर मा पूरा संसार के मनखे अन्न लपाथे। फिर हम आप ले यही कहना चाहबो कि ज्यादा ले ज्यादा रगबा मा संगवारी हो, आप मन जैविक खेती ला करो। धान के संगे संग कोदो पुटकी साग भाजी के बात करबो के कंगनी सावा है, एक जैविक खेती करके हमन अवैया पीढ़ी ला बिल्कुल शुद्ध और जैविक अन्न दे सकत हन। फिर भाई स्वस्थ धरा और खेत हरा के बात ला आप मन जानत हो, तेखरे सेती हमन घेरी बेरी आपसे कथन के आप मन जैविक अन्न श्री अन्न के संगे संग आप मन पशुधन पशुचारा के उपयोगता ला समझाओ। अगर हमन जैविक खेती डर जाथन तो पशुधन के उपयोगता निश्चित रूप ले बाढ़ी छे। गोबर हा हमर खेती किसानी पर सबले कीमती हीरा ले ज्यादा कीमती ये ला आप मन जानत हो, काबर के गोबर ले जैविक खातु बनथे, जीवामृत बीजामृत घनमृत वर्मी कम्पोस्ट का नहीं बने है। गोमूत्र के उपयोग ला आप मन जानत हो कतका उपयोगी है हमर पर्यावरण पर, हमर धरती माता के विषाक्तता दूर करे पर। तेखर सेती हमन आप ले घेरी वेरी के वो किसान भाई हो कि आप मन जैविक खेती करो, चाहे कुछ के आप मन फसल लगाओ जैविक धर जाबो तो अच्छा हो। दूसरमा अगर हमन जैविक खेती करथन तो हमार पर्यावरण घलो स्वस्थ रही, पर्यावरण स्वस्थ रही तो हम सब स्वस्थ रहो। जैविक खेती के गोठ लग उठियाबो, जैविक खेती के गोठ लग उठियाबो। अब आप मतलब फरमाइशी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत सुनाबो आवा वही ढर चलत हन।

आप मन के गीत कार्यक्रम मा मैं राजू भैया जम्मू किसान भाई बहनी में श्रोता संगवारी मन के स्वागत करत हूँ। संगवारी हो आप मला बढ़िया सुघर सुघर गीत सुनाबो फिर संगे संग आप मन कर खेती किसानी के गोट घलोला गोठियाबो जी ओ जी से बात करबो के समय हमर किसान भाई मन धान के बुआई कर डरे रोपा लगा डरे आनी बानी के साग भाजी लगा डरे संगे संग कचरा जाम गए हन भाई तो कचरा हा हमर फसल ला ढाप देते और जिन पोषक तत्व हमर फसल ला मिलना चाहिए तेला कचरा मन ग्रहण कर लेते जेखर ले जिन खेत में कचरा ज्यादा रहते तो वो खेत के फसल कमजोर हो जाते तेखर निंदाई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। जैसे जैविक खेती के बात कर रहे तो आप मन जैविक ढंग लेखन नियंत्रण घलो कर सकत हो रासायनिक दवाई मत छिंचाओ जी हाथ मन दिया निंदाई कर लेता तो गुरु है कांध है भदैला है इखर नियंत्रण कर सकत हन सामक नियंत्रण कर सकत हन जेखर ले हमर फसल बढ़िया भोगा जही। अब आप मन के गीत के पहली गीत आप ला परोसत हन कुलेश्वर ताम्रकार कविता हिरकने के गाए गीत के संग हमर संगवारी मन के चिट्ठी हमार हाथ में जिले पढ़े शुरू करत हन नैला बोड़सरा जांजगीर ले दुर्गा प्रसाद तिवारी हेमदेव तिवारी उमाबाई मीनाक्षी अंजुलता ठगिया।

देवी तिवारी, अमन कुमार तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा, आप पहारा हिवारा, जीरा दुर्गले, भैया पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर मन, आप हो भाटा पारा दतरेंगे ले हमार मयारू संगवारी, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा और महादेव घाट अमलेश्वर ले हमार मयारू संगवारी, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजाला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, और आप हो बावली मर्रा कोनाले, उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार और शिवम कुमार कौशिक, पौड़ी लाफा, जिला कोरबले, रामसनेह साहू, मीना साहू, ब्रह्मानंद, परमानंद, संध्या, प्रियंका, हर्षु, महिमा, प्रज्ञा, तन्मय, आनंद और रोमान साहू, आप हो हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगल, हमर संगवारी मन रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव मन, भरेवा पथरिया ले हमर मयारू संगवारी, चंदूलाल सिंह राव, नराणी नोमेश, नेहा औ वान्य सिंगरोल मन, आप हो बिलाई गढ़ले, रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी, अनिष्का, राधिका गजभिये, बाग बहरा भद्रशील हमर मयारू संगवारी, पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल्या सेन, खुशबू सेन, आप हो रसेड़ा अकलतरले, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, वासु डाली और पूर्वेश साहू, आप हो जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास मानिकपुरी, जय दास, दिवेश दास, धनमंतिन, मोतिम बाई मानिकपुरी, गणेश धाम भरसुली, खेरघा बाजार बलौद जिला ले आप में लिखे हो, तो आप सबके फरमाइश में हमन कार्यक्रम के पहले गीत सुनाबो, यही कहत कि जिंदगी सावन कस हरियर रहे, जिंदगी सावन कस हरियर रहे, धरती ला हरियाबोन, सावन ला प्रघावत संगी, सावन ला प्रघावत संगी, सावन के गीत सुनाबो सुनाओ।

0: सावन आगे आगे संगी मोर, कतका सुघर भाव भरे गीत ल सुनामतरी से कविता हिरकने कुलेश्वर ताम्रकार और उनकर संगवारी मन अबे संदेशाला सुनथन।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
8: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
9: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: किसान भाई बहनी हो, सियान मन कहते जी के लाख बीमारी के एक ही दवा है, ओ है सावधानी। और ये बात है लागू होते हमार खेती किसानी के बूता घलो मा, लगातार बदरहा मौसम रहले फसल मा कतको किस्म के कीड़ा मकोड़ा हा संचर जाते। और कतका बेर कूतर कूतर के नुकसान करते हमार फसल ला गम नहीं मिले, जेखर कारण हमार किसान भाई मन के कतका अकन नुकसान हो जाते जी। संगवारी हो, ये नुकसान हा सिर्फ और सिर्फ आप मन के नो है, बल्कि पूरा राष्ट्र के नुकसान है। ते करते थी हम सब ला कीट नियंत्रण के उपाय ला करना चाहिए, खास करके हम लगातार जैविक खेती के चर्चा करथन, तो संगवारी मन ला जैविक कीटनाशी के उपयोग करे के सलाह हम देना चाहबो। इला आप मन सरल ढंग ले अपन घर में घलो बना सकत हो। 1 किलो नीम के पत्ता ले लेवा, कनेर के पाना ले लेवा, आँख के पाना ले लेवा, बीह के पाना ले लेवा, बिश्रम के पाना ले लेवा, न्यूगुर के पाना ले लेवा, इला एक ठीक गंज में बढ़िया कूट के थोड़ा सा रख देवा। और गंज के भर भर नहीं तो मरकी के भर भर पानी रख के धीरे धीरे मंद आँच में वाला आप मन चुरोला शुरू करा। डबकत डबकत खौलत खौलत जब 1/4 माछी तोला बढ़िया छान के जार वाला बोतल में भर लो। और जिन मान ले आप मन आने दवाई ला सब्जी फसल या धान फसल में छिड़कता या जिन फसल में छिड़कता वही मान ले संगवारी हो, यदि अपन ये अपन घर के बनाए दवाई ला छिछिया तो निश्चित रूप ले कोनो किस्म के नुकसान नहीं होही और पर्यावरण घलो शुद्ध होही। सबले बढ़िया बात यह है कि आप मन के पैसा घरों हा बाछी किसान भाई बहनी हो, ए उद्यम ला आप मन खचित करी। हम जैविक कीटनाशी बनाए बर आप मन अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या फिर अपन क्षेत्र के उद्यान विस्तार अधिकारी फिर लगातार

0: राम सभा कार्यक्रम में हमन विशेषज्ञ के सलाह आप मन लगे तथा कार्यक्रम के अगला गीत भर स्वर हे भागवत सप्रे और संगवारी के पसंद करे हे हमर ए मयारू संगवारी मन आप हो रुआ माधा शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन सैया सौरभ जैन शौरी जैन और शुभम जैन पोटिया कला दुर्गले भैया संजय साहू सुजाता साहू ससांग साहू सीमा साहू आप हो मोहम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा ले रमेश कवर्थ राजकुमारी और आरती कवर्थ आप हो वहाँ शीले हमर मयारू संगवारी डगेशा राम साहू गौरव साहू नूतन घनश्याम अलका जानवी साहू आप हो नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा बिमतरा ले हमर मयारू संगवारी है सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता भाई कमल कांत सारथी वीरेंद्र ब्रिज कांसार थी आप हो धूरा बांधा भाटापारा ले भैया प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू और पुष्पराज साहू तो आप सबके पसंद में हम भागवत सप्रे के गाय गीत सुनाबो ये कहबो कि लैकल लखेला के भुलकार ले लैकल लखेला के भुलकार ले मया के भाखा संग चुस्कार ले बढ़िया आप मन ले गीत सुनाथन सुनाओ
1: था वह तुनवा नोनी।

किसान भाई बहनी हो, आप सब जानत हो पानी ले जिन गानी ही, और कथे के बिन पानी सब सुन बात आप मन जाना था भाई। फिर लगातार पानी गिरत थे और बहा के नदिया नरवा के माध्यम ले समुद्र तक चलते थे, तो जल संरक्षण के डर घलो हमला उदिम करना है। जिन बंधानी बांधा थन, जिन जगह पानी लछे कथन, तालाब मछे कथन, डबरी मछे कथन, उनसे तालाब के साफ सफाई करे के बाद आप मन बढ़िया बढ़िया मछली के जिन संवर्धनी, मछली बीज के संवर्धनी कर सकत हन। रोहू, कतला, मिरकल, कामन कार्प, एक

जला आप मन पर्याप्त मात्रा में अपन क्षेत्र के मत्स्य अधिकारी के सलाह लेके डाल सकत हो। दूसर माँ संगवारी हो आप ले बताना ये चाहतन कि 31 जुलाई तक जिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा कराए के समय से ओखर समय है बाढ़ गए जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत आप मन 14 अगस्त तक धान मक्का मूंग कोदो कुटकी और रागी ये फसल के बीमा खचित करवा सकत हन। कार्यक्रम ला आगु बढ़ाबो और अगला गीत बरसवर है जी डी मानिकपुरी और संगवारी मन के पसंद करे है हमर ये मयारू संगवारी मन। आप हो सेवा जी चौक राजिम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्री श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीला रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा दिव्यांश आरोही और लवी श्रीवास्तव मन। आप हो जांजगीर मेहेंदा ले हमर मयारू संगवारी रामनारायण कश्यप कविता देवी कश्यप कुसुमलता कश्यप खुशबू कुमारी कश्यप। आप हो नकुशा मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज लुतरा खमरिया लेन बुड़गाम छत्तीसगढ़ हमारा मेयारू संगवारी है राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशि कांता प्रजापति मन। आप हो बनिया पारा धमतारी ले हमारे मेयारू संगवारी रामचंद माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा और पूरा परिवार मन। उड़नता लगोरी बिलासपुर ले हमारे संगवारी है श्यामता प्रसाद गायकवाड़ हेमलता जागृति सरला आकांक्षा शमीर गायकवाड़ और आप हो हटरी चौक बिलाईगढ़ ले खीख राम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन और रेणु देवांगन। तो आप सबकी पसंद में जी डी मानिकपुरी और खर संगवारी मन के गाय ये सुघर गीत ला सुनाथन सुनाओ

संगवारी हो, अब आप मल्ला मंडी और मौसम के जानकारी दे दिन। मिले जानकारी के अनुसार मौसम के हाल ऐसा है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रही से 26 डिग्री सेल्सियस, बादल और गरज के संग कहूँ कहूँ पानी गिरे के संभावना है। बिलासपुर मंडी में सेब के भाव 14,500 रुपये क्विंटल, केला के भाव 3,000 रुपये क्विंटल, अनार जिला दर्मी कथन 9,200 रुपये क्विंटल, अंगूर 9,500 रुपये क्विंटल, पपीता 6,000 रुपये क्विंटल और जहाँ तक बात करबो कटहर के 1,400 रुपये क्विंटल, गोंदली 2,000 रुपया, आलू 2,400 रुपये क्विंटल, पताल 1,900 रुपये क्विंटल, भाटा के भाव मिले 1,700 रुपये क्विंटल, गाजर के 3,200 रुपया, रमकेरिया के भाव मिले हम 5,000 रुपये क्विंटल, करेला 4,500 रुपया और लौकी 1,200 रुपया, मुरई के भाव 1,600 रुपये क्विंटल, फूल गोभी 3,200 रुपया, शिमला मिर्च के भाव मिले हमला 3,300 रुपये क्विंटल, धनिया 6,000 रुपये क्विंटल और हरियर मिर्चा के भाव मिले हमला 4,000 रुपया क्विंटल। कार्यक्रम बर आगू चिट्ठी लिखे हमारे संगवारी मन, गीत ला सुने बर और गीत सुनाही आशा रामपुर ते उनकर संगवारी मन, भाटा पारा ले हमर मयारू संगवारी भैया बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चुवाराम वर्मा, नारायण यदू, भुवन कामरी औ सूरज बारेकल मन, संगे संग चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की बिक्की नानू, रविन्द्र सेन औ यहीं से है खुशी रौनक सेन मन, आप हो दरचूराले ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलौरी, रेखा मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, आप हो कतिया पारा जूना बिलासपुर ले हमर मयार संगवारी, सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, आशीष रवि, शनि देवांगन, बमहर चाटी डीले, गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी कुमारी मिल्की और मीनाक्षी निधि देवांगन मन, दतरेंगी भाटा पाराले भैया नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, आप हो पीपर पारा पाल चुआ मुंगेलीले हमर मयारु संगवारी, उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका, भानुप्रिया दिवाकर, आप पोड़ी भाटा कलतराले, दिलीप चंदन, चौराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, बिरगांव तखतपुर ले जयमूल कोल, दिलीप कोल, रामाड़ी कोल और भुवनेश्वर कोलमन, आप हो बेलगहना शक्ति भराले हमर मयारू संगवारी, श्याम शंकर मिस्त्री, विजय बाबा विजय पायलट, महेश कांसीपुरी, कैलाश चंद्रवती, बाबा बबली, कुसुम राधा, रागनी गीतामन, आप हो पौड़ी लाफा जिला कोरगा पाली ले हमर संगवारी मन लिखे, विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी बबली, सुमन मंटू, मिष्ठी सृष्टि, दृष्टि गन्नू, गणेश और कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू मन, तो आप सबकी पसंद सुनाथन आसाराम पूर्ति के गाये गीत, यही कहबो कि निक लागे मोर गाँव के घाट घटौंदा, निक लागे मोर गाँव के घाट घटौंदा, मया प्रीत होते जिंदगी के सुघर सौदा, जिंदगी के सुघर सौदा आवश्यक।

किसान भाई बहनी हो, आप सब जानत हो पशुधन सबले बड़का धन होते। तो पा के हम आप ले घेरी बेरी कथन के आपके छेरिया हो के गरुआ हो के भैंसी हो उला आप मन टीका बरसाते टीका खचित लगा हो। एक बार भारत सरकार के डाले राष्ट्रीय पशु टीकाकरण कार्यक्रम घलो चलते। कोठा के साफ सफाई हमारे किसान भाई मन खचित करना चाहिए। संगे संग खेती किसानी के बात करबो तो दलहनी और तिलहनी फसल राहर तिली सोयाबीन भुरमुंग एकर बुआई आप मन मेड़ के पार है परिया है एमा उपचारित करके बीजा लगवाओ और सतत आप मन हमारे कार्यक्रम ग्राम सभा कार्यक्रम सुनत रहा और कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले खेती करिया तो बढ़िया हो। कार्यक्रम के आखिरी गीत पर स्वर साधना मरावी शैल बाला ध्रुव और उनकर संगवारी मन के पसंद करे है हमर ए मायारू संगवारी मन पट पर भाटा पारा ले मोतीलाल भटपरिया संतोष कुमार यादव मुनरूल यादव आप हो सूरजपुरा ले सुरेंद्र कुमार यादव श्रीमती प्रीति यादव योग्य कुमार यादव और मोक्ष कुमार यादव दतरेंगी ले हमर मयारू संगवारी है विश्राम यदु पार्वती यदु लक्ष्मीना प्रतिमा और रीना यदु आप हो तेली पारा बिलासपुर ले भैया रंजन साहू बेबी ईशानी साहू छनुला श्रीवास अनिता श्रीवास रिंगनी ले हमर संगवारी मन भेजे चिट्ठी दिनेश वर्मा करुणा वर्मा मन आप हो देवरी भाटा पारा ले भैया गन्नूला रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री मयाराम रजक कुनेश्वर रजक फणेश्वर रजक मुकेश कुमार रजक कुमारी हाब्या।

रजक टानिया रजक मन और आप हो सिंगी ऋषि महानदी सिहावा परत अंचल बिलर गांव ले हमर संगवारी में लिखे है मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु देवांगन अंकित देवांगन और संगवारी मन तो आप सबो के पसंद मा कार्यक्रम के आखिरी गीत सुनाबो ही कहत के करिया मंजार घोपे गरजे और किड़के लौके रिम झिम पानी गिराए रे बैरी सावन के तन मन मा आगी लगा रे आवा सुनाथन सिंगार रस रे भरे ये गीत।

हाय रे मोर मयारू मैना कतका सुघर भाव भरे गीत सुनात रिसे साध राम मरावी शैल बाला ध्रुव और कर संगवारी मन और यही गीत के संग आज के हमर आप मन के गीत सिराते हमर पता है आप मन के गीत ग्राम सभा अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 49 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर पिन नंबर है 495006। एक संग आज के ग्राम सभा कार्यक्रम सिराते दो विदा राजू भैयाला जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संजय वत्सल के गाय गीत और गजलों को।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।

0: भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संजय वत्सल के गीत और गजलों को।

संजय वत्सल की गाय इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वर की तरफ से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें हम खुद अपनी ज़िंदगी के लिए चुनते हैं। उन्हीं में से एक रिश्ता है दोस्ती का, यानी मित्रता का। मित्र, सखा, सहेली, ये सारे नाम हैं उस प्यारे से रिश्ते की जो हर कमी के साथ हमें स्वीकार होती है, जो रंग रूप जाति मजहब से परे होती है। कहते हैं मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। लोग मिलते हैं हर राह पर, परंतु दोस्तों की तरह कोई अनमोल नहीं होता।

दोस्ती शब्द केवल नाम नहीं है, यह एक अटूट एहसास है, एक गहरा रिश्ता है जो हर रिश्ते से खास होता है। हमारे जीवन में हर रिश्ते का अपना महत्व है, पर दोस्ती का रिश्ता इन सबसे अलग है। दोस्त हर सुख दुख के साथी होते हैं। सच्ची दोस्ती एक वो दौलत है जिसके पास रहने पर हर व्यक्ति अमीर हो जाता है। कहते हैं, जिंदगी में दोस्ती नहीं, दोस्ती में जिंदगी होती है।

मित्रता निस्वार्थ होती है। इनमें से कृष्ण सुदामा की मित्रता की जोड़ी, जिसमें अमीरी गरीबी के भेद को मिटाकर सच्ची दोस्ती निभाने की प्रतीक मानी गई है, वहीं श्रीराम और सुग्रीव की दोस्ती

यह सिखाती है कि संकट की घड़ी में मित्र का हमेशा साथ देना चाहिए। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हमें बताती है कि हर परिस्थिति में मित्र के प्रति अटूट निष्ठा और अंतिम सांस तक मित्र के साथ रहने का संदेश देती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट या विपत्ति में साथ देता है।

किसी ने कहा है कि हर बदलती हुई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। गुलजार ने लिखा है, कुछ लोग बिना रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, कुछ लोग बिना रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, ज़िंदगी में शायद वो लोग ही दोस्त कहलाते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसी। मैं शहर ए चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।

दोस्ती बिना किसी स्वार्थ का वो पवित्र रिश्ता है जो सबसे अधिक कीमती होता है। श्रोताओं, आज मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे की आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि दोस्ती न कभी इम्तिहान लेती है न कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भी भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है।

श्रोताओं, आकाशवाणी बिलासपुर के साथ आपकी और हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार, पर चलते चलते लीजिए सुनिए फिल्म दोस्ती का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व

0: वो बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान

0: और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7%.

करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है

जॉनी मेरा नाम, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट

0: वो होता है ललित का मध्यम सांप लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को, एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: बिछधारे न जाओ शाम पैया परू, बिछधारे न जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्काने, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

सन्नाटे की दुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात। वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा ही तय होता है कि कौन कब किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगोकर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में

0: चाहे गीत में आज थे संगीतकार जयदेव के चंद नगमे, फिल्मों के नाम, फिल्म दूरियां, फिल्म कमन, फिल्म रेशमा और शेरा,
1: दो दीवाने शहर में,
0: फिल्म घरौंदा। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में सरती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है समाचारों का अनुप्रसारण। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: मॉर्निंग समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा

0: चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal. higher.